खूबसूरती दिल और ज़मीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूँ गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरो का खजाना है, ये कहना है सादिका। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8।

से नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रैवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

से राम राम भाई। अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी।

0: जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूँ गगन आपके साथ। वो गगन हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूँ अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से, इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें होती है। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हम समुदाय की बातें करते हैं, आपकी बातें करते हैं, जिंदगी को जीने की बातें करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने जिस तरीके से बातें की तो जाहिर सी बात है कि आप समझ ही गए हैं कि जीने की हम बात कर रहे हैं। और जल को पीने की जब बात होती है तो शुद्धता की बात होती है, और शुद्धता की जब बात होती है तो एक ब्रांड की बात होती है। वो ब्रांड कौन सा है उसके बारे में जानेंगे जरूर। लेकिन आज मेरे स्टूडियो में खुद चलकर एक बड़ी शख्सियत हमारे बीच में जुड़ चुकी है, बहुत बड़े अनुभव के साथ आप पाते हैं। और जो पीछे अनुभव है मैं देख पा रहा हूँ कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर मार्केटिंग में आप हैं आयुता वाटर, प्रेजेंट टाइम में आप हैं, और ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर बीएम ग्रुप में आप जुड़े रहे हैं, हेड ऑफ मार्केटिंग वेंकटेश नेचुरल एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में आप रहे हैं नोएडा में, और कैटेगरी मार्केटिंग मैनेजर पतंजलि में आपने भी बहुत अच्छा काम किया है, और एक बहुत बड़ा ब्रांड जिसका नाम है बिस्लरी से भी आप जुड़े रहे हैं। आप हैं मेरे साथ मिस्टर अजीत कुमार सिंह। तो सिंह साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। मैं अजीत कुमार सिंह।
0: सर, कहीं कुछ परिचय में कमी रह गई है तो आप मुझे बता सकते हैं। कैसे आप?
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
0: और जो आपका एक ब्रांड है आयोटा वाटर, जिसमें आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं,
1: जी जी जी,
0: तो इसके बारे में सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये थॉट कैसे आया और किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। ऑफलाइन आपने मुझे इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया, तो थोड़ी थोड़ी हम बातों को शुरू करेंगे।
1: जी जी बिल्कुल। आयोटा वाटर एक ब्रांड नहीं, एक सोच है, एक समाज को ध्यान में रख
0: के मार्केटिंग मैनेजर है। और यही चीजें होती है, यही चीजें इंसान को आगे लेकर जाती है। ग्रेट
1: जी, एक अपने आप में एक सोच है, एक सोच के तहत हमने एक विज्ञान का जो विषय है उसको हमने अपनाया है इस पानी के अंदर। मार्केट में पानी विगत 20-25 सालों से जो पैकेज ड्रिंक वाटर का मार्केट चल रहा है उसमें हमने एक इनोवेशन का सोचा जो एक जनकल्याण का भी माध्यम बने, पानी के साथ साथ जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारी बाकी चीज़ें हमारे लिए बाय प्रोडक्ट्स है। हमारा इंटेंशन ये, हमारा उद्देश्य लक्ष्य ये है कि लास्ट माइल तक हमारा पानी पहुँचे, गाँव में घर घर तक हमारे पानी पहुँचे। आज शुद्ध पानी का अपने आप में एक विषय है, और पानी का सीधा संबंध आपका
0: हेल्थ से
1: है, स्वास्थ्य से है। और वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब हमें शुद्ध पानी नहीं मिलता, वाटर कंटेनमेंट के इश्यूज होते हैं। आज बड़े बड़े सोसाइटियों में भी वाटर कंटेनमेंट इश्यूज होते हैं, आए दिन अखबारों के अंदर भी आप पढ़ते रहे होंगे। तो उस चीज़ों को समाधान करने के लिए तो हमने आयोटा वाटर लेकर आया, जिसमें एक विज्ञान का भी योगदान है, जिस योगदान का नाम है नैनो बबल टेक्नोलॉजी।
0: परफेक्ट। ये जो बात है दोस्तों, इस संबंध में हम जरूर जानेंगे एक सोच के बारे में, और जो नैनो बबल टेक्नोलॉजी का आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं ये क्या है, ये सोच कहाँ से डेवलप हुई, दो बातें, इन बातों को हम जरूर आगे लेकर जाएंगे। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, बहुत ही खूबसूरत गाना। और इस गाने को सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं। और ये लाइनें जो कहती हैं कि जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। हमने ये भी सुना है कि पानी पर भविष्य में युद्ध होगा। युद्ध आज हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान का युद्ध, पाकिस्तान का युद्ध। हम युद्ध अक्सर अपने गली मोहल्ले में देखते हैं कि पानी की कमी है जिसकी वजह से लोगों में झगड़े हो जाते हैं। अब बात आती है शुद्धता की। जब शुद्धता का जिक्र हो रहा है तो जिक्र इस समय स्टूडियो में हो रहा है अजीत कुमार सिंह जी, जो कि आयोटा वाटर से जुड़े हुए हैं। जिक्र कर रहे हैं एक सोच का, जिक्र कर रहे हैं एक शुद्धता का। तो सर ब्रेक के इस पार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद करण जी।
0: सर सोच के बारे में मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ जो आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा। ये जो नई टेक्नोलॉजी है नैनो बबल टेक्नोलॉजी, ये क्या है, किस सोच के साथ आप डेवलप हो रहे हैं, किस सोच के साथ आप मार्केट में उतर रहे हैं, ये सोच कहाँ से आई?
1: हमने इस तकनीक में ये रखा है कि पानी का हर बूंद ताकतवर बने
0: जी।
1: उस बूंद को ताकतवर बनाने के लिए हमने नैनो बबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो आपके शरीर में एडवांस हाइड्रेशन को देता है, आपके एक नेक्स्ट लेवल जनरेशन को जो हाइड्रेशन की जरूरत है, जो एनर्जी की लेवल की जरूरत है। जैसा कि हम जानते हैं 60% आपका शरीर पानी से बना हुआ है, उस पानी की आपूर्ति के लिए ये बहुत ही उत्तम समाधान है आपके आज के दौर में। और हमने ये तकरीबन 2023 ये सोच स्टार्ट हुई, 2025 में हमने इसको बाजार में उतारा है। और अभी हम दिल्ली NCR में इस चीज़ को सर्व कर रहे हैं, चंडीगढ़ ट्राई-सिटी वगैरह में सर्व कर रहे हैं, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी में सर्व कर रहे हैं, ताकि हमारे लास्ट माइल तक जाए हमारा पानी। और ये तकनीक ऐसा तकनीक है जो हमारे जो त्वचा पे छिद्र है उससे भी 200 times छोटा होता है ये तकनीक। इसके एक बूंद के अंदर अनगिनत जो है बबल्स, जो नैनो बबल टेक्नोलॉजी का ताकत है, वो एक बूंद के अंदर मौजूद है, जो आपको ताकतवर बनाता है। आप अगर इसको एक महीने तक यूज करेंगे तो आपको अपने शरीर के अंदर अंतर मालूम पड़ेगा, क्या ये टेक्निक है, कैसा है, क्या है आयोटा वाटर। तो ये टेक्नोलॉजी एक हमारे तरह से एक समझिए कि एक बहुत बड़ा पानी के अंदर आंदोलन है अपने आप में। और ये एक पैटेंट टेक्नोलॉजी है भारत का, जिसका पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसके भारत के माध्यम से विश्व को सर्व करने वाले हैं। वी सपोज टू सर्व द वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब। सो दिस इज अवर द इनोवेशन। आयोटा इज ऑल अबाउट इनोवेशन। नाम भी वैसे ही रखा, आई स्टैंड फॉर द इनोवेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ए फॉर ऑल।
0: माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप तो मन की बातों को पढ़ लेते हैं, आपने मेरी मन की बात छीन ली मुझसे। और यही मैं जानना चाह रहा था, मेरे श्रोता जानना चाह रहे थे कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत लकी है आयोटा टीम, क्योंकि आप जैसे दिग्गज उनके पास है।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: चलिए सिलसिला जो बातों का वो लगातार जारी है, सिर्फ और सिर्फ सुनो शायद 90.8 FM पर। मैं हूँ गगन आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं स्टूडियो में, जल की बातें हो रही हैं। निश्चित तौर पर जल है तो कल है, क्योंकि अगर शुद्ध पानी आप पियेंगे तो कल को आप देख पाएंगे। और शुद्धता का जब जिक्र हो रहा है तो जिक्र हो रहा है स्टूडियो में आयोटा वाटर का। ये तो विज्ञापन हो गया, क्या बात है। चलिए हमने कम नहीं है। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। प्रोग्राम का नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें मेरे यानी गगन के साथ। जो विषय है वो विषय है जल। जल के बारे में बातें हो रही है और एक ब्रांड उसके बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है आयोटा वाटर। जल का जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है शुद्धता का। अगर आप शुद्ध पानी पी रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने शरीर का ख्याल रख पा रहे हैं। शुद्धता नहीं है तो निश्चित तौर पर सच बात तो यह है कि दिक्कतें परेशानियां आज नहीं तो कल आपके सामने आएंगी ही आएंगी। एक एक्सपर्ट के तौर पर एक नुमाइंदगी कर रहे हैं आयोटा वाटर की, हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में हैं अजीत कुमार सिंह जी। तो अजीत जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी।
0: एक सोच के साथ जब इंसान बढ़ता है आगे चलता है, हम जानते हैं चैलेंजेस जिनको हम कहते हैं कि चुनौतियां आती हैं
1: जी,
0: तो जाहिर सी बात है कि वो चुनौतियां आई होंगी, कुछ चुनौतियां आज हैं और उन चुनौतियों को पार करके मैं समझ पा रहा हूं कि कई सारे आउटलेट आज आपकी दिल्ली एनसीआर में हैं और उस सोच के साथ आप आगे भी बढ़ेंगे
1: जी।
0: तो उस स्ट्रेटजी के बारे में बताइए प्लीज।
1: देखिए प्रतिस्पर्धा तो काफी स्वाभाविक होता है किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को आप बनाते हैं, कोई उत्पाद जो होता है उसको वो साकार करने के लिए हमारे जैसे जो विशेषज्ञ होते हैं वो एक प्लानिंग हम बनाते हैं, एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं बाजार के लिए। तो हमारे पास जो आज के टाइम में जो हमारी टीम है वो ये कोई मुझे कहने में संकोच नहीं कि भारत के सबसे अच्छी टीम हमारे पास, जो हमारे सारे सेल्स की टीम है, हमारे पास जो एक्सपर्टीज है, जो हमारे ऑपरेशन टीम है, जो हमने प्लांट ऑपरेशन जो कर रहे हैं तो वो सारे हमारे उच्च कोटि के सारे स्तर हैं। तो हमने स्टैंडर्ड का काफ़ी ध्यान रखा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड हो वो विश्व स्तरीय हो, और हमारे प्रतिस्पर्धा इसलिए हमारा ज़्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि हम एक यूनिक प्रोडक्ट हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है आयोटा वाटर की। ये हमारे जो फाउंडर्स हैं मिस्टर अनंत कपूर और हमारे जो MD हैं मिस्टर अमित कपूर, तो ये हमारा पेटेंट है। आगे आने वाले वर्षों में हम पूरे भारत के अंदर को सर्व करने वाले हैं, उसके बाद हमारा प्लान जो है विश्व स्तरीय पर जाने का है। तो ये जो है हम चाह रहे हैं कि पूरा जो दुनिया है इसका संपूर्ण लाभ ले और इस विज्ञान का फायदा उठाए, इस विज्ञान को अपने जीवन में तर्कसंगत करें। और जिस तरह से हमारा आने वाला वक्त जो समय जो है हमारे पास बहुत कम बचता है, जब हम काम करते हैं 24 घंटे जब हम काम करते हैं हमारे पास थकान होता है, आज जो स्ट्रेस लेवल हाई है जिस तरह से लोगों का जनमानस का और एक थका देने वाली ज़िंदगी है, तो उसमें एक आयोटा वाटर एक बहुत अच्छा आपके लिए समाधान बन सकता है जो आपको एक ताकत देगा, जो आपको डिटॉक्स करेगा, जो आपको हाइड्रेट करेगा, जो आपको नेक्स्ट लेवल हाइड्रेशन पर ले जाएगा, तो आप तुरंत जो है अपने आपको रिजुवेनेट महसूस कर सकते हैं।
0: वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और एक एक्सपर्ट के तौर पर ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ नुमाइंदगी कर रहे हैं आयोटा वाटर की। अजय कितनी अच्छी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तुम, मजा आ गया। और मतलब आप अजीत साहब हमारे एक बहादुर के बारे में बोल दो कि मिलके खुशी हुई, बड़ा अच्छा है गगन के साथ रहता है ये बहादुर, कैसा लग रहा है आपको मिलके मुझे?
1: बहुत मजा आ रहा है।
0: अरे बहुत मजा आ रहा है और भी मजा आएगा, ब्रेक के उस पार हम जानेंगे। स्पोर्ट्स में भी ये बहुत अच्छा काम करने वाले हैं और दिल्ली के अंदर सरकार के साथ भी इन्होंने हैंडशेक किया, डिटेल में जानेंगे।

0: के माध्यम से हर जगह हम इसको उपलब्ध करवाएंगे।
1: ठीक है,
0: हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर अरुणाचल तक।
1: चलिए, आप भारत से बाहर निकलें, क्योंकि निश्चित तौर पर जब भारत से बाहर निकलेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमारे भारत की एक पहचान होगी आयोटा वाटर के रूप में, क्योंकि हम यहाँ कुछ अच्छा सर्व कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के बारे में प्लीज आप मुझे बताइए कि जो
2: अरे आपको बादाम खाने की जरूरत भूल गए, दो सवाल मैंने करे थे, एक का जवाब दिया, एक का जवाब नहीं दे पाए। हाँ देखा, मैंने आयोटा वाटर पिया था इसलिए मेरी याददाश्त मजबूत है।
1: तो खैर, ये चुप रहिए बात, आप बताइए।
0: बिल्कुल आपका जैसा निर्देश है, बादाम जरूर खाऊंगा।
1: अब तो आप दिल पर लगे।
0: तो स्पोर्ट्स ऐसा रहा कि जब मैं भी कुछ बचपन से देखता था, तो अंक तालिका जो भी होते थे, जो बड़े खेल प्रतिस्पर्धा होते थे
1: जी,
0: उसके अंदर हम देखते थे अंक तालिका। भारत कहीं से नामो निशान भी नहीं होता, कहीं कहीं कुछ एक चंद स्वर्ण पदक, रजत पदक टाइप की चीजें कुछ होती थी। तो स्पोर्ट्स का शुरू से बहुत सारा चुनौतियाँ रही है स्पोर्ट्स सेक्टर में। और स्पोर्ट्स में जैसे अब इलेक्ट्रोलाइट्स होता है या पानी का जो आवश्यकताएँ होती है जो आए, तो प्लेन वाटर कभी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वो
1: सही नहीं, लाभकारी नहीं।

0: खासकर जो भागने दौड़ने वाले खेल हैं लाइक मैराथन वगैरह हैं, जो अदर रेसेस हैं, उसमें खिलाड़ी को इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और बॉडी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा योगदान होता है। ठीक है, आज सारा जो प्रदूषण है, ये सारी चीज़ें हैं, सब तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही चला रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है। और ये हमारे पानी में 36% ऑक्सीजन है
1: जी,
0: जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है बाकी पानी के रिस्पेक्ट में।
1: ये क्वालिटीज़ हैं आउट ऑफ वाटर
0: जी,
1: फुलफिल करते हैं
0: जी,
1: आप
0: जी,
1: लोग
0: जी,
1: वेरी
0: जी,
1: वेरी
0: जी। तो ये आपको एक एक आप सम्मान के आप ये चल सकते हैं कि आपको एक अल्टरनेटिव दे रहा है, एक आपको विकल्प दे रहा है कि जिसके अंदर आप ऑक्सीजन तुरंत अपने शरीर के अंदर ले सकते हैं और अपने आप को पुनर्संचारित कर सकते हैं।
1: वेरी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे शब्द का आपने यहाँ इस्तेमाल किया, और तुरंत आपको एनर्जी मिल जाती है। वो एनर्जी, जो एनर्जी ड्रिंक आप आजकल टीवी विज्ञापन में देख रहे हैं, वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। ये जो एनर्जी ड्रिंक है, यानी कि ये जो एनर्जी का पेय जल है, पेय पदार्थ है आल्टा वाटर, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका जो लाभ है आपको मिलेगा जरूर। एक खास सवाल मैं आपसे जरूर जानूंगा, क्योंकि क्षेत्र बढ़ रहा है, लोग

ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शांता 90.8 एफएम विद मी मेरी रानी गगन के साथ मेरे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं आयतो वाटर के एक्सपर्ट मिस्टर अजीत कुमार सिंह जी। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

लाइफ है, सारा डिफरेंशिएशन है। सोशल मीडिया काफ़ी एक बहुत बड़ा टूल बन चुका है मार्केटिंग का, तो इन सब टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है, अपने जो प्रोडक्ट का जो रीच है, अपने प्रोडक्ट के जो इंफॉर्मेशन है, अपने प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारियाँ देनी हैं, या जो आपका एक कम्युनिकेशन का माध्यम बन सकता है सोशल मीडिया के, तो इन सब चीज़ों के अंदर जो है हमारे जो युवा पीढ़ी काफ़ी संलग्न है और इसका फ़ायदा हमेशा होता है। और मैं इन चीज़ों का हमेशा टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो आपका चलता ही रहता है, जिसको ATL

0: से बहुत सारी चीज़ें होती है जब बहुत अच्छे उत्पाद को बनाते हैं लेकिन हम उसे पहुँचा नहीं पाते जनता तक। तो उसका बस ये होता है कि उसको मार्केटिंग करने का तरीका जो होता है वो हम चुनते हैं कैसे चुनना है, कि हमें अमेजोन पर जाने की ज़रूरत है, हमें जनरल ट्रेड्स में जाने की जरूरत है,
1: सुनो शारदा पर आने की जरूरत है, ये भी आप मेंशन करें।
0: और हमें सुनो शारदा पर आने की जरूरत है गगन जी के साथ।
1: अरे सर शुक्रिया, थैंक यू। देखिए हाँ, इसको कहते अपने मुंह क्या कहते मिच्छू वन्नमिया मिच्छू वन्नम, मैं पूछ रहा था कि कहीं तुम भूल तो नहीं गए। चलिए सर, हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी है, आप यही मुस्कुराते रहे, ये मुस्कुराहट

0: दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें समय दिया, आयोटा वाटर के बारे में डिटेल में बातें बताई, और एक जिंदगी का सार ये कि जल को व्यर्थ ना बहाएं, है ना। ये मैं एक सार आपके साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पानी की टंकी हम लगा लेते हैं, 500 रुपए का अलार्म लगाना भूल जाते हैं, जो कि आपको एक इंडिकेट करता है, सूचित करता है कि आपकी टंकी भर चुकी है, कृपया उसको बंद कर दें। तो ये बेसिक चीजें, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज ना करें, पानी को व्यर्थ ना बहाएं, पानी भरपूर पीजिए जो कि आपकी सेहत के लिए मुफीद है, लाभकारी है, जल है तो कल है। तो अजीत कुमार सिंह जी, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, मेरी यानी गगन के साथ, और गगन को दीजिए।

0: क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क।

खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, इस शेर का अर्थ ये है, या यूं कहें कि इन खूबसूरत लाइनों का मतलब ये है कि जहाँ एक सम्मान है, आत्म सम्मान की बात है, खुद की पहचान की बात है, और समाज में एक अलग जगह बनाने की पहचान है, ये खूबसूरत लाइनें यही कहती हैं। राम राम, दो सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ, जहां ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं, पढ़ने पढ़ाने की बातें होती हैं, जिंदगी को जीने की बातें होती हैं आपके अपने रेडियो स्टेशन पर। वैसे प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक हम यहां से ऑन एयर होते हैं। आज एक खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है। कहते हैं कि लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, जिसे हम बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में आसपास हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास क्या खास हो रहा है। पत्रकारिता क्षेत्र के ऐसी दिग्गज आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका तारुफ आपको कराना चाहूँगा। हमारे साथ हैं अजय सिंह जी, जो कि सीनियर कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छे एक अनुभव के साथ आप आते हैं, और जितना अनुभव सर का है तो उस अनुभव को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इसके बारे में, यानी कि इन बातों के बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया,

0: और साथ ही साथ जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे ये भी समझ में आया कि भारत के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव आप रहे हैं और आपने जो सेवाएं दी हैं वर्ष अक्टूबर 2019 से लेकर 2025 तक, यानी कि सितंबर 2025 तक अपनी सेवाएं दी हैं। तो इस अनुभव के साथ आज की हमारी शख्सियत हमारे बीच है। तो सर सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: माफ़ कीजिएगा सर अगर मैं कहीं कुछ तारुफ में कुछ कम बात रख पाया, क्योंकि बहुत बहुत बहुत बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं, लेकिन जितना समय मिला मैं आपके बारे में कह पाया।
1: नहीं, तारुफ आपने थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया।
0: ये तो ज़रा नवाजी प्यार है सर आपका। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कैसे हैं, कैसा लग रहा है शारदा यूनिवर्सिटी के इस आंगन में, प्रेमिसेस में आकर?
1: नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे अंदाज नहीं था कि कैंपस इतना बड़ा है और इतना वाइब्रेंट है। तो जब मैं पहले आया तभी मुझे लगा कि अच्छा है कि प्राइवेट सेक्टर शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम कर रहा है, तो देख के अच्छा लगा।
0: वेरी गुड सर, थैंक यू सर। थोड़ा मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा, अगर आप मुझे मेरे लिसनर्स को बताएं, मेरे स्टूडेंट्स को बताएं, क्योंकि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट का एक स्कूल है जहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, दूर दराज से स्टूडेंट्स आते हैं। जब ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ती है तो वो उनके बारे में जानना समझना चाहते हैं कि ये जो सफ़र आपका रहा है कैसा सफ़र रहा, सुहाना सफ़र रहा या अड़चनें भी बहुत ज़्यादा आई, और उन अड़चनों को पार करते हुए आप आज समाज में एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, ज़िंदगी जैसे चलती है वैसे ही चली। और मैं, मुझे याद है कि मैं 1984 के आसपास मैं बैंक में था, और बैंक में मैं थोड़े दिन आगरा में काम किया और इसके बाद मैं टाइम्स ऑफ इंडिया चला आया। टाइम्स ऑफ इंडिया में ट्रेनी स्कीम होती थी और ये बात है 85 की
0: जी,
1: और वहाँ से फिर मैं

0: कंपनी का मैं इसके
1: बारे में जरूर जानूंगा क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन का खजाना है और मैं नहीं चाहता कि कम समय में ये बातें हो जाएं। मैं जरूर सबसे पहले ये समझना चाहूंगा कि जो आपने मुझे बताया कि

0: स्ट्रेस आपके आसपास होता है या ज़्यादा आप खुश होते हैं, तो कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं मेरे लिसनर्स को?
1: कोई स्पेसिफिक गाना तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे गाने हैं जो कि और ओल्ड सॉन्ग्स हैं,
0: ओल्ड सॉन्ग,
1: क्योंकि थोड़ा सा उसमें एक एटर्नल वैल्यू रहती थी। तो अगर आप कोई भी सॉन्ग ले लें, कैफी साहब का या आप शैलेंद्र का, तो वो सॉन्ग्स ऐसे थे जो कि सुनने में अच्छा लगता था।
0: चलिए, बॉबी फिल्म का शैलेंद्र साहब की रचना से सजा हुआ गाना मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। सो दोस्तों, आप कहीं जाएगा बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और मेरे साथ आज एक शख्सियत जुड़ रही है आप।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं क्योंकि शारदा विश्वविद्यालय का एसएसएमएफई

एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं मीडिया क्षेत्र के बारे में। कहा जाता है कि लोकतंत्र के चार स्तंभ, जिसमें नाम आता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। मीडिया की ही बात हो रही है तो हमारे साथ

0: टाइम्स ऑफ इंडिया में, और पत्रकारिता में मैं हमेशा रिपोर्टिंग साइड में रहा,
1: ऑन ग्राउंड रहे।
0: ऑन ग्राउंड रहे और हार्डकोर रिपोर्टिंग साइड में रहा। तो हार्डकोर रिपोर्टिंग साइड में रहने से ये हुआ कि हमें घूमने को बहुत मिलता था, या चीज़ें, हाँ चीज़ें जो ज़मीन पे हो रही हैं उसको जानने का मौका मिलता था। तो वो मैंने किया 91 तक। 91 में मैं बिहार चला गया और बिहार में मांग के गया। मैं इकोनॉमिक टाइम्स में उस समय गया था,

0: परिवर्तन कहीं ना कहीं देखा।
1: टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंज किया है, टेक्नोलॉजी ने देखिए एसेंस
0: पर लिहाज से मैं आपसे जरूर जानना समझना चाहूंगा सर कि कितना सिद्धांतों के साथ समझौता किया जा

आप रेट्रो यानी कि पुराने गानों को अपने दिल के आसपास रखते हैं, और शैलेंद्र साहब का जिक्र किया तो क्यों ना मैं एक और गाना उन्हीं के पिटारे से निकाल कर लेकर आता हूँ आपके लिए। तो ये ब्यूटीफुल ट्रैक्स आपके लिए सिर्फ सरोशादा 90.8 FM पर। दोस्तों आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए।

0: बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। पत्रकारिता क्षेत्र के दिग्गज आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत एक अच्छे अनुभव के साथ आ पाते हैं और उस अनुभव को ऐसे गुणी जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके साथ अगर आप बैठते हैं, संगत करते हैं, उनसे आप सीखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकता है और बहुत कुछ आप हासिल करते, आप समाज में सकारात्मक दिशा में परिवर्तन ला सकते। हमारे साथ जुड़े हुए हैं 4 दशक के अनुभव के साथ, बड़े बड़े चैनल्स में काम कर चुके हैं अजय सिंह जी। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: ब्रेक पर जाने से पहले मेरा सवाल था, मैं उसको अब दोहरा देता हूँ क्योंकि कुछ लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

0: पोएट्स को पब्लिक में आने में महीनों लग गए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला।
1: नहीं पता चला।
0: और जब रिपोर्टर वहाँ गया तो

हर आदमी के पास इंफॉर्मेशन है और पैसा वो देता है कि नहीं। तो एक मीडिया सेक्टर में, पूरे मीडिया सेक्टर में वो एक सीरियस प्रॉब्लम आई है जिससे कि डील कर रहे हैं।

जब

0: चीज तो बहुत साफ है कि पत्रकार कोई खुद से नहीं बन सकता है। आप एक सर्टेन ट्रेनिंग होती है और जर्नलिज्म के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल इथिकल दोनों होती है। तो वो आप में अगर नहीं है तो आप पत्रकार नहीं है। तो इसीलिए पत्रकारिता अलग है, जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं वो एक अलग जॉब है,
1: उस कैटेगरी में
0: वो नहीं आएंगे, पत्रकार में नहीं आएंगे।

0: एल्गोरिदम में वो बढ़ रहा था, तो एल्गोरिदमिक ढंग से वो राइट्स हो गए वहां पे। तो ये सारी चिंता तो पूरे वर्ल्ड में चल रही है कि सोशल मीडिया का ये जो एस्पेक्ट है ना कि वो एल्गोरिदम से गाइडेड होता है, वो इथिक्स से गाइडेड नहीं होता है। तो अगर एल्गोरिदम से गाइडेड होगा तो वो इमोशनलेस होगा।
1: असर इस चीज को, इस वर्ड को अगर आप थोड़ा समझाना चाहें तो मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा जिस वर्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये पता नहीं है। एथिक्स की बात तो चलो हम समझ में आ गए, जो एल्गोरिदम

0: एल्गोरिदम से गाइड होना, और फेसबुक या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी उसी से गाइड होते हैं। उनको पता होता है कि वर्ल्ड ओवर क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या देख रहे हैं। तो लेकिन वो हमेशा इथिकल होगा ये सही नहीं है।
1: क्या बात, बहुत कुछ दोस्तों, ये जो सवाल था यही जवाब सर से हम सुनना समझना चाह रहे थे, और ये सवाल का जवाब आपके लिए था कि इस भाषा को, इस परिभाषा को आप आत्मसात करिए कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो उस पर विश्वास मत करिए, उसके बारे में जांच पड़ताल करिए क्या ये सही है या गलत है। और जब आप अच्छी न्यूज़, अच्छी बातें प्रेषित करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में लोग जागरूक भी होते हैं और जिससे वो लाभ भी उठा रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर प्यार बांटते चलिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सोशल 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे अनीम गगन के साथ। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं, एक शख्सियत हैं मीडिया जगत के, बहुत बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं और लगभग 4 दशक प्लस का अनुभव है सबके पास। आप हैं अजय सिंह सर। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू।
0: राष्ट्रपति जी का जिक्र आपके इस बायोडेटा में हो रहा है।

0: कैसा माहौल हुआ करता था वो प्लीज आप बताएं।
1: राष्ट्रपति भवन तो बिल्कुल ही अलग असाइनमेंट था, क्योंकि हम तो फील्ड में रिपोर्टिंग करते रहे हैं। तो ये दरअसल अपॉइंटमेंट होता है जो ACC अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, तो उनका उनसे होता है और राष्ट्रपति जी अप्रूव करते हैं। तो इस तरह से ये एक सरकार

जब हम इस तरफ आए तो कई चीजें पता चली कि शायद वहां पे अगर हम होते तो जो चीज न्यूज बन जाती वो न्यूज नहीं थी, या हम जितना जानते हैं जिस पे हम न्यूज बनाते हैं उससे 10 टाइम्स ज्यादा वहां

अच्छा, और दूसरा हमारा ये जो रोल था, इसमें जब भी प्रेसिडेंट का इंटरफेस किसी से भी होता था तो उसमें हमारा रोल आता था, प्रेस सेक्रेटरी का रोल होता है, यानी अगर वो इस

0: इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग.
1: मैं और भी देख रहा था कि बहुत एक शॉर्ट एंड क्रिस्पी आपने बहुत अपनी बातें रखी हैं. अगर अदरवाइज मैं देखूं कि बहुत लंबा लिखा जा सकता था आपके बारे में, लेकिन आपने बहुत कम शब्दों में बातें रखी हैं. तो मैं एक पक्ष पर ये जानना समझना चाहूँगा, इस ओर ध्यान लेकर जाना चाहूँगा आपका, कि आप किताबों का जिक्र कर रहे हैं और जो किताबें हैं जो पब्लिश हुई हैं, तो उसके बारे में बताइए, वो जर्नी कैसी रही, कौन कौन सी किताबें आप
0: वो किताब

इलेक्शन हारना जीतना एक अलग बात है, आप हो सकता है कि इलेक्शन हार जाएं या जीते जो भी होगा, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा इतना बड़ा खड़ा हो गया है कि बीजेपी एक प्रिंसिपल पोल बन गया है, उसके इर्द गिर्द सारी पॉलिटिक्स होगी रिवॉल्व। कांग्रेस का जो 60-70 तक था, तो हमारा वही थीसिस था, उसी पे हमने रिसर्च किया था, और करीब जो ये करीब 4 साल चला था रिसर्च।

आपकी संगत करना चाहेंगे, आपसे बारीकियों को हम सीखना समझना चाहेंगे, क्योंकि आप शारदा यूनिवर्सिटी के SSMFE को आप ज्वाइन कर रहे हैं और उसके लिए आपको बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। साथ ही साथ मैं ये आखिर में ये समझना चाहूँगा, अगर आपकी तरफ से कोई एक कहते हैं ना कि आने वाली जनरेशन को

0: सवारी होंगी जो कि शायद उनको लगे कि इस लायक हैं कि उसको वो इम्बाइब करें।
1: इसके बारे में ज़रूर समझना चाहूँगा कि आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, लोग कनेक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं रहती। दिक्कतें परेशानी हर किसी की ज़िंदगी में है, जिस राह पर आप चल रहे हैं हर्डल्स आएंगे, ब्रेकर्स आएंगे, तो उन चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए कैसे मुस्कुराते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं?
0: नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मुस्कुराने के सिवा। तो जैसा मैं हूँ वैसा हूँ।
1: क्या बात, क्या बात है। चलिए, और ये जो बातों का सिलसिला है, ये जो सफ़र रहा हमारा, यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। एक अनुभवी व्यक्ति को हमने सुना जिनके बारे में, उनकी यात्रा को हमने जाना, आत्मसात किया। और आपको ये साक्षात्कार, ये इंटरव्यू कैसा लगा? 01204060205 अर्थात 120 40 60 205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8FM@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल जोल के माध्यम से मेल बढ़ा सकते हैं। और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप सबके लिए खुले हुए हैं, आपका स्वागत है। तो वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9:11। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, न टेंशन लेने की ज़रूरत, न किसी को टेंशन देने की ज़रूरत। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। और अपने खास मेहमान का

0: करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रैवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशारदा 90.8 एफएम कम यूनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर at Sharda University.

आज का जो हमारा विषय है वो हमारे सीधे प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, सेहत सही और लाभ कही। आज की जो श्रृंखला है उसमें हम एक ऐसे ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, ऐसे ज़रूरी मुद्दे को उठाने वाले हैं जो किशोरों के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। 10 से 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन भी बदलता है, यानी मन में भी कई सवाल उठते हैं। ऐसे में सही जानकारी मिलना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, किस तरह माता पिता स्कूल समाज सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं, इन्हीं सभी मुद्दों पर आज हम बात

0: हमारा विषय है किशोरों के यौन स्वास्थ्य से संबंधित, उस पर प्रकाश डालें।
1: भाई सबसे पहले दीपाली जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही साथ मेरे सभी श्रोताओं को तहे दिल से दिल की गहराइयों से प्रणाम नमस्कार। जिस तरीके से आप मुझे सेहतिया सिंह कहती हैं, सेहतिया भैया कहती हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं जानकारी का जो खजाना है, जो पिटारा है, उसमें बहुत सारी जानकारियां जुटा कर लेकर आऊं, क्योंकि जो ये करेक्टर है सेहतिया सिंह, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जानकारियां इनके पास

0: जैसे किसी बगीचा में सही समय पर पानी और खाद न मिले तो दोस्तों पौधा सूख जाता है। वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह न मिले तो बच्चा उलझ सकता है। और यही फर्ज बनता है कि जिस तरीके से दीपाली जी ने कहा कार्यक्रम के आरंभ में, माता पिता, स्कूल के अध्यापक और अच्छे दोस्तों, तो मुझे लगता है कि उस बच्चे का जो मानसिक विकास है सही दिशा में होगा। अगर वो इस उम्र के पड़ाव पर गलत संगत में चला गया तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान, उसके परिवार का नुकसान और कहीं ना कहीं यकीन मानिए कि एक देश का भी नुकसान हम कर रहे हैं। इसीलिए सुनो शारदा 90.8 FM स्मार्ट के साथ मिलकर सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में आज हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि SRH के विषय में बात कर रहे हैं। और इसीलिए इस उम्र में सही बातें जानना और समझना दीपाली जी बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने भैया। वैसे मेरा आपसे सवाल है कि किशोरावस्था के दौरान हमारे शरीर और मन में क्या क्या बदलाव आते हैं?
0: भाई सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा कि वाकई आपने बहुत अच्छा सही सवाल किया है। तो जो आधार है जानकारियों का, एक रिसर्च के जरिए मैं आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ। बात निकल कर ये सामने आती है दोस्तों कि जब बच्चा 10-11 साल का होता है, ध्यान दीजिएगा 10-11 साल का होता है, तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाती है, शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर पड़ेगा, कभी

0: बहुत सी बातें आती हैं। जैसा कि आज हमारे स्टूडियो में आप मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के माध्यम से, जो कि हम स्मार्ट के साथ मिलकर चला रहे हैं, हमारे श्रोताओं और समुदाय के लोगों को आप बताएं क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में करते हैं, वो हमें बताएं।
1: बिल्कुल, देखिए दोस्तों, सही जानकारी होना बहुत अच्छी बात है, और सही जानकारी को अपने दिमाग में बैठाएं, यानी कि लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। जैसा डॉक्टर्स कहते हैं, जैसे एक्सपर्ट्स बताते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ खास बातों को ध्यान में रखेंगे तो कोई परेशानी होगी नहीं। कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना दोस्तों बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर न लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की, यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझें कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किलें बढ़ा सकता है। एक रिसर्च कह रही है, इसमें मेरा कोई शब्द नहीं है, मेरी कोई अपनी बात नहीं है, तो इस बात को जानना समझना बहुत आपके लिए जरूरी है। इसलिए बचाव के तरीके जैसे कि गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए, और सबसे अहम खास बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझ कर होना चाहिए। दोस्तों, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार भी है। ये समझना ही असली समझदारी है दोस्तों।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, अपने शरीर को समझना बेहद जरूरी है। लेकिन भैया, अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या उसके मन में कोई सवाल उठे, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए?
1: भाई, सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए। यकीन मानिए कि जो संकोच करते हैं वो संकोच में ही रह जाते हैं। जो जानकारी समझना चाहते हैं, सवाल करते हैं, उनको आंसर भी मिलते हैं, लेकिन वो तौर तरीका आपके पास होना चाहिए। डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, जिसको मालूमात है उससे आप जान सकते हैं। गूगल पर भी दीपाली जी आजकल जानकारी है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांध कर यकीन मत करिएगा, आप बेसिक जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उसी के आधार पर आप डॉक्टर से सलाह जरूर करेगा। साथ ही साथ अपने घर में माता पिता, हाँ भाई, माता पिता से बढ़कर अच्छा दोस्त को हो नहीं सकता, उससे आप जरूर सलाह लीजिए। स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर आपको भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेना चाहिए। दीपाली जी, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दोस्त साकिब का यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। कुछ ऐसी समस्या उनके सामने आई, चूंकि हमारे सामने

0: उस समस्या का समाधान आपको बताएंगे और वो जानकारी आप अपने दोस्त तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो आपके सवाल पर हंसे, गुस्सा करे या आपका मजाक उड़ाए, ये आपको जानना समझना बहुत जरूरी है कि आपका हितैषी कौन है, आपके सवाल का जवाब वो दे पाएगा या सिर्फ आपका मजाक उड़ाएगा, ये आपको समझ होना बहुत जरूरी है।
1: जी सेहतिया भैया, यानी संकोच नहीं रखना चाहिए। अगर आपके अंदर संकोच है तो उसे निकालकर हमें बातें करनी चाहिए। जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच, परंपराएं रुकावट बन जाती हैं। जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा से रो मत, मर्द बन का बोझ रहता है। ऐसे माहौल में सही जानकारी, सही सुविधा बेहद जरूरी है। तो सेहतिया भैया, सुनो शारदा 90.8 FM सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से आप हमें बताएंगे कि ऐसी स्थिति में संकोच को छोड़कर सही जानकारी और सही सुविधा कैसे प्राप्त की जा सकती है।
0: भाई दीपाली जी, बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं और अच्छी बात है, तो जाहिर सी बात है कि इस खूबसूरत सवाल का जवाब भी बड़ा ही खूबसूरत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चाहे गाँव हो दोस्तों या हो शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई। लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना

0: दीपाली जी, आगे बढ़ने से पहले इस बात पर मैं अपना खुद का अनुभव शेयर करना चाहूंगा। मेरी माँ मुझे इन बातों को समझाया करती थी। कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती थी तो एक दोस्त के नाते, एक माता पिता होने के नाते, चूंकि वो मेरी माँ थी, तो मैं उस समस्या का समाधान उनसे ढूंढने समझने की कोशिश करता था। और फिर जाहिर सी बात है कि डॉक्टर से भी आप सलाह ले ही सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात हम कर रहे हैं कि आप अपने माता पिता को दोस्त बनाइए, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं।
1: सेहतिया भैया, हम देख रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ऐसा करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, जरा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जरूर जरूर, बिल्कुल, ये चिंता की बात है दोस्तों। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, कम उम्र में अगर वो गर्भवती हो जाए तो माँ और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। फिर लड़की की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं, जिंदगी बस घर गृहस्थी तक ही सिमट जाती है दोस्तों।
1: बिल्कुल, सपने छूट जाते हैं, पढ़ाई करियर छूट जाता है। सेहतिया भैया, अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से चोरी छुपे गर्भपात करा लेती है। ये सच में बेहद खतरनाक है।
0: जी, जी।
1: लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताइए ये कितना खतरनाक है।
0: बात आप अच्छी कर रही हैं, यानी कि जो एक रिसर्च है वो हमारे सामने है। और ऐसा होता है जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती, तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी बहुत जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है दोस्तों।
1: सेहतिया भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालातों से वो बच सकती है। ठीक है भैया, अब हम एक दूसरी समस्या पर आते हैं, क्योंकि हम अपने श्रोताओं को सभी जानकारी देना चाहते
0: जी,
1: हैं।
0: जी।
1: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। स्मार्ट के साथ मिलकर हम जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसका उद्देश्य है कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं। तो भैया, हमारी दूसरी समस्या ये है कि आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये क्यों बढ़ रहा है?
0: सही बात है कि बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? दोस्तों, किशोरावस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं। वे बहुत सी नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन

0: एचआईवी और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बार फिर से मैं ये बात रिपीट कर देता हूँ, एचआईवी और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए तो वे अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
1: बिल्कुल, किशोरों को सही जानकारी, सटीक जानकारी और खुलकर जानकारी देना बेहद जरूरी है। भैया, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य को लेकर तो खूब बातें की, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता, तनाव की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो सेहतिया भैया, आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि डिप्रेशन, चिंता और तनाव जैसी दिक्कतें युवाओं में क्यों बढ़ रही हैं?
0: भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है दीपाली जी। और ये चिंता, तनाव, डिप्रेशन कोई भी हो और किसी के साथ अगर जुड़ा है तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे वो गाना है ना कि हानिकारक है बापू, ऐसे ही बंधु ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। अब आप खुद फैसला करिए कि क्या सही है क्या गलत है। खैर, जब आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है और ऊपर से समाज की उम्मीद कि तू लड़का है रो नहीं सकता या तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाजत नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा, यानी कि वो घुटन महसूस करेगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती हैं। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रह, ऐसी बातें मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की बहुत जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है दोस्तों।
1: हाँ बिल्कुल, अगर सही समय पर सही जानकारी मिल जाए तो बहुत कुछ सुधर सकता है। किशोरों के सामने

0: फैसले कैसे समझदारी से ले सकते हैं?
1: वाकई बहुत अच्छे सवाल आप जुटाकर लेकर आई हैं एक अनुभव के आधार पर। बहुत बड़ा अनुभव है आपका दीपाली जी। और जाहिर सी बात है कि जब एक ताना बाना बुना जाता है तो कार्यक्रम की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो चलिए आपके सवाल के जवाब पर आते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई ना कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभा पाएंगे।
0: बिल्कुल भैया, किशोरों को सही जानकारी

किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं, तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो और वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो गई तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है।

0: की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा।
1: बात तो सही है भैया आपकी, और आपने सारी सटीक जानकारी दी है जो कि हमारे युवाओं को पता होनी चाहिए। लेकिन भैया कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया गया, बताया गया या उनको जानकारी दी तो वो कहीं गलत रास्ते पर ना चल उठे।
0: देखिए ये बात आती है दीपाली जी हमारे सामने। अब सपोज करिए कि हम किसी को जानकारी नहीं दे रहे लेकिन उसके पास जानकारी का अभाव है, तो वो सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम किसी को जानकारी दे रहे हैं और वो व्यक्ति समझदार निकल गया तो निश्चित तौर पर वो अपना बचाव कर सकता है, और मैं समझता हूँ एक व्यक्ति 10 लोगों को भी सही रास्ता दिखा सकता है। अब समाज में ऐसी तमाम चीजें आप देखेंगे जिनकी जानकारी नहीं है लेकिन लोग उल्टे सीधे रास्ते पर होते हैं जिसका खामियाजा उनको आगे चलकर भुगतना पड़ता है। लेकिन हम कहेंगे कि जानकारी ही बचाव है, जो कि अक्सर ये लाइनें हम सुनते भी हैं, और यही वजह है कि डॉक्टर्स की बातें हम जन जन तक सेहत सही लाभ कई के माध्यम से पहुंचा रहे होते हैं। भारत सरकार जो हमें विज्ञापन देती है उसमें भी इसी प्रकार की कुछ जानकारी होती है, वो भी हम श्रोताओं तक पहुँचा रहे होते हैं। अब बात करते हैं आपके सवाल की। सबसे बड़ा भ्रम है कि जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं है, है ना? तो आप जानकारी साझा कर सकते हैं, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना है। जानकारी का मतलब मकसद, अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपसे कह भी रहा था। लेकिन अगर स्कूल या घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, अगर स्कूल, माता पिता या हेल्थ सेंटर की ओर से किशोरों से खुले मन से बात की जाए तो वो बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं और खुद को सुरक्षित भी रख सकते हैं। सेहत या भैया, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना बेहद जरूरी है, लेकिन क्या इसमें सरकार की तरफ से भी कोई पहल

0: यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
1: ये तो बहुत अहम जानकारी आपने श्रोताओं को दी। किशोरों के पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार का प्रयास सराहनीय है, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि इस योजना में क्या क्या सुविधा मिलती है? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं?
0: देखिए दीपाली जी, RKSK जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। बहुत ही काम की चीज है दोस्तों। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला है किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक। ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं जहां किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूरण कार्यक्रम। इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें

0: कर सके।
1: अच्छा भैया, ऐसा है क्या?
0: अब जैसे मेरे गांव की सीमा है, वो कक्षा 10 में पढ़ती है। आर के एस के से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड संभाल सके। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थी जिससे इन्फेक्शन हो जाता था। अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है दोस्तों। आर के एस के सिर्फ आम किशोरों के लिए नहीं है बल्कि एल जी

0: वे सभी की मदद बिना भेदभाव के कर सके।
1: बिल्कुल, सभी की मदद हो बिना भेदभाव के। भैया, आपने जो आर के एस के बारे में बताया वो बेहद जरूरी जानकारी थी। जैसे जब ये प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंच जाए तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस से भी भर जाएंगे, क्योंकि उन्हें सही समय पर सही जानकारी मिल जाएगी।
0: देखिए, एक और बड़ी

0: ये तो बहुत बड़ी योजना है भैया, ARSH यानी आश। और हमारे श्रोताओं को सेहतिया भैया के माध्यम से कितनी गहन और कितनी जरूरी जानकारी दी जा रही है। तो भैया ये योजना तो बहुत बढ़िया लगी मुझे, इसके बारे में कुछ और जानकारी हो तो बताइए।
1: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब सरिता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है, अव्वल आती है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुरा लेती थी, शर्मा जाती।

0: कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गईं। अब सरिता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
1: बिल्कुल, ये जो भूमिका है ANM दीदी

0: अपने श्रोताओं समुदाय के सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं। भैया, जब कोई इतनी गंभीर बात हो, खासकर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करी जानी चाहिए। इसमें डर शर्म करके अपना या दूसरों का नुकसान नहीं किया जाना चाहिए।
1: सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी। कुछ खाने का मन ही नहीं करता, चक्कर आते रहते। फिर वो आंगनवाड़ी केंद्र गई तो वहां मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की। फिर उसकी जांच करवाई, पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता न चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी दोस्तों, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
0: हाँ, समय पर इलाज मिलने से गीता स्वस्थ हो गई और ANM की भूमिका भी काफी सार्थक रही। भैया, तो इसका मतलब हम मान लें कि ये सभी योजनाएं सच में जमीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं और इनका असर भी हो रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात सुनाता हूँ। सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही पास के गांव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी। 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। बोली, अब ज्यादा पढ़ाई का क्या फायदा, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल से पहले शादी करना न सिर्फ कानूनन गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। और उन्होंने ये भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग देती है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है दोस्तों और आंगनवाड़ी में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है।
0: बिल्कुल। तो भैया, ये बात तो साफ जाहिर है कि सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिल जाए तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं।
1: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और ना ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं। वे बीच का सफर तय कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल भैया, आपने बहुत जरूरी और गहन जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करी। तो हम मान लें भैया कि अगर ये ठान लें कि किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, उन्हें सुनेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि जब उनके पास सही जानकारी होगी तभी उनकी सोच खुली हुई होगी, तभी सेहत अच्छी रहेगी और समाज तरक्की करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम किशोरों के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, एनीमिया से जुड़े हुए सभी मुद्दों को समझें और उनके स्वास्थ्य के बारे में उन्हें खुलकर जानकारी दें। इसमें परिवार से लेकर डॉक्टर से लेकर सभी की अलग अलग भूमिका है। सभी अपनी भूमिकाओं को समझें और किशोरों का साथ दें। तो भैया, अब हम लेते हैं इजाजत। मैं अपने श्रोताओं से इजाजत लेना चाहूंगी। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कही के अगले एपिसोड में। घर जाने से पहले हम लेंगे एक शपथ।
1: जी, पहली लाइन आप लेंगे, दूसरी लाइन मैं लूंगा।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
1: दोस्तों, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य

0: विशेष चर्चा सुनी। इसी संबंध में समुदाय से अनुपमा गर्ग हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो इस संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी रखती हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहती हैं।
1: देखिए, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और उनके घर वालों के लिए इन बातों पे बात करना जरूरी है, इन मुद्दों को उठाना जरूरी है। ये भी जरूरी है कि जब आप इसके बारे में सूचना कहीं से लें या कहीं दें, किसी को दें, तो वो सूचना सही है कि नहीं ये पता हो, वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है कि नहीं ये पता हो। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं?

यानी SRH के संबंध में हमारे साथ जुड़ी रही अनुपमा गर्ग। हम सिर्फ आपसे इतना कहना चाहते हैं, भटकिए मत, कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए और दोस्तों से जरूर बात करिए, वो दोस्त जो आपको सही सलाह दे सके। अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपनी टीचर से बात करिए और यही शिक्षा स्कूल कॉलेजेस में आज दे

0: ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया। डेली रेजिमेंट के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी, जहां पहले एक दिन में कई गोलियां लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियां ही लेनी पड़ेगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयां दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं। अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुँचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारामारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन सम

कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा, इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए

एलकालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं और अधिक

साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही

हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता।

0: 90.8 FM नए अंदाज में
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन को ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज

0: कृषि कार्य संपन्न करने में मददगार है और बड़े स्तर पर कृषि कार्य करना इनसे आसान होता है। इसके अलावा कृषि उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण और बाजारीकरण तक के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक और व्यवस्थित ढंग से कृषि यंत्रों और मशीनों द्वारा संपन्न किया जाता है। इन यंत्रों पर किसान भाइयों का काफी पैसा खर्च होता है, इसीलिए कृषि यंत्रों के प्रयोग और रखरखाव पर पूरा ध्यान देना आवश्यक है। इससे न केवल कृषि यंत्रों की आयु बढ़ती है बल्कि कृषि यंत्रों के रखरखाव की लागत में कमी के साथ साथ समय की भी बचत होती है। किसान मित्रों, कृषि कार्य करने के बाद कृषि यंत्रों को साफ सुथरे और सूखे स्थान पर रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार इन पर तेल और ग्रीसिंग करते रहना चाहिए। कृषि यंत्रों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार ही प्रयोग करें और विशेष कार्यों के लिए विशेष यंत्र का ही प्रयोग करें ताकि कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। कृषि यंत्रों को प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह से उनके सभी पुर्जों की जांच कर लें। यंत्रों के उपयोगकर्ता को यंत्र चलाने का अच्छी तरह से ज्ञान और उसका प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। अन्य सुरक्षात्मक साधनों का जैसे पानी और रेत को कार्य करते समय पास रखें। कृषि यंत्रों और मशीनों का प्रयोग करते समय केवल कुशल श्रमिकों को ही सहायक के रूप में काम पर रखें। विशेष तौर पर महिला श्रमिकों को कार्य शुरू करने से पहले ठीक प्रकार समझा दें कि किस प्रकार कार्य करना है। कार्य करने के दौरान कोई रुकावट आ जाए तो कुशल मिस्त्री की ही सहायता लें और इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को कृषि यंत्र और मशीनों के पास ना आने दें। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई कृषि यंत्रों का रखरखाव और उनका उपयोग करें। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही कृषि यंत्रों के रखरखाव और उनके उपयोग की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और किस्सा रहेगा लवकुश का।
1: और हम

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान से ये रागनी, किस्सा था लव कुश का। किसान मित्रों, भारत सरकार द्वारा आपकी आय को बढ़ाने और आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि किसान भाइयों के समक्ष आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर सरकार द्वारा योजनाएं लॉन्च की जाती हैं और इन योजनाओं को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कृषि फसलों का चौमुखी विकास करना है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों का रुझान बागवानी के क्षेत्र में अधिक देखने को मिल रहा है और सबसे खास बात यह है कि वर्तमान समय में देश के हमारे बहुत से किसान भाई बागवानी से अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने बागवानी के क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा देने और हमारे किसान भाइयों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया है। किसान मित्रों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत किसानों को उच्च दामों वाली सब्जियों, फल और फूलों साथ ही मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी में किसानों को अधिक आय के साथ ही विभिन्न प्रकार के फायदे हैं। खाद्यान्न फसलों को उगाने के लिए बहुत सारी भूमि की आवश्यकता होती है, जबकि बागवानी का कार्य आप कम भूमि पर आसानी से कर सकते हैं। बागवानी फसलों की सहायता से छोटे और हमारे सीमांत किसान भाई अपनी कम भूमि पर भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस मिशन के माध्यम से किसानों को बागवानी फसलों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा इस स्कीम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बागवानी फसलों को बढ़ावा देना है, ताकि हमारे किसान भाई पारंपरिक खेती की अपेक्षा आधुनिक खेती की तरफ आकर्षित हो सके। इस योजना के माध्यम से किसान भाइयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सिंचाई, नेट हाउस, भंडारण और तारबंदी आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो किसान बहन भाइयों, ये तो बात रही राष्ट्रीय बागवानी मिशन की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और हरेंद्र नागर। किस्सा रहेगा महाभारत का।

ज्ञानेंद्र सरधाना और हरेंद्र नागर द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई हंसराज क्वारी कन्या न्यू सोचे कित जोड़ी कावर पावे, हे ईश्वर तेरा भजन करूं जो मेरी जोट मिलावे। ऐसे सोचते सोचते बियाबान जंगल में जहां सत्यवान पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काट रहा था, सावित्री की निगाह घूम गई और उसकी शान को देख करके मन मोहित हो गई। भला के कहने लगी लक्कड़हारे थे और के

छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए छह माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण पांचाल आपके साथ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही उमदा डिस्कशन, जिस पर कि हमारे साथ होंगे कुछ गेस्ट और वो डिस्कशन है महिलाओं पर और मीडिया पर। लेकिन विषय क्या है? विषय है मीडिया में महिलाओं का आज के युग में चित्रण। और इस डिस्कशन में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुक्ता मर्तोलिया, डॉक्टर उत्सव कृष्ण मुरारी जी, डॉक्टर सीपी रश्मि और मिस्टर प्रवीण जैन। ये सभी अतिथि आज हमारे साथ जो है वो SMFE डिपार्टमेंट शारदा यूनिवर्सिटी से। आप सभी का इस डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद किरण जी।
7: थैंक यू।
5: धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डॉक्टर मुक्ता मर्तोलिया से। डॉक्टर मुक्ता, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मीडिया में औरतों का जो चरित्र चित्रण किया जा रहा है या फिर जिस भी तरह से उन्हें प्रेजेंट किया जा रहा है, उसमें सबसे पहले हम पॉजिटिविटी से बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कितना पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में हो रहा है?
6: किरण जी देखिए, ये बहुत ही एक संगीन मुद्दा है जिस विषय में हम आज बात कर रहे हैं। और महिलाओं का मीडिया में जो चरित्र चित्रण है, इसके ऊपर बहुत डिस्कशंस होते भी रहे हैं, काफी फ्रूटफुल भी हैं। तो अगर पॉजिटिव की तरफ जाएं तो दरअसल मीडिया काफी अच्छे तरीके से आजकल यू नो जो विमेन है या जो महिलाएं हैं उनका पोर्ट्रे कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें कुछ एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें, अगर वहां पे आप देखेंगे तो जो एक स्टीरियोटाइप इमेज विमेन्स का रहा है हमेशा से मीडिया में, हम रिप्रेजेंट करते हैं और मीडिया हमेशा एक्यूज्ड भी होता रहा है इस चीज को लेके कि उन्होंने शायद महिलाओं को कहीं एक टाइप्ड तरीके में बांध दिया है, तो उसको वो कहीं वो रूढ़िवादी जो विचारधारा है तोड़ रहा है। जैसे कुछ एडवर्टीजमेंट्स हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि पहले ये होता था कि महिलाओं का काम है वो घर की देखभाल करेंगे, घर में मतलब अपने हस्बैंड्स बच्चों को देखेंगे, कहीं ना कहीं वो टूट रहा है। वो चाहे आप धारा के एड्स हो या कैसे भी, जहाँ पे ये है कि अब वो वॉइसलेस नहीं होकर उनका घर की जिम्मेदारियों में और घर की कहे ना जैसे बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं उनमें उनका पक्ष रहता है या वो जो कहेंगी वो माना जाता है। तो ये जो एड्स हैं ये बहुत तरीके से अगर बोले तो सोसाइटी में हम, क्योंकि मीडिया हमेशा सोसाइटी का एक मिरर रहा, जो सोसाइटी में होता है वो मीडिया में दिखता है और जो मीडिया में दिख रहा है वो सोसाइटी में होना शुरू होता है। तो मैं ये कहूंगी कि अभी जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है वहाँ पे मीडिया का जो पोर्ट्रेल है, मतलब मीडिया में जो विमेन्स का पोर्ट्रेल है, वो बहुत हद तक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जा रहा है, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि महिलाएं अब सिर्फ आओ बहन चुगली करें इसमें नहीं दबके रह गई है, वो अब घर में उतना ही हिस्सेदारी निभा रही है जितना कि हमेशा से पुरुष निभाते आए हैं। तो मेरे हिसाब से मीडिया काफी अच्छा कर रहा है व्हेन इट कम्स टू यू नो द पोर्ट्रेल ऑफ विमेन इन मीडिया।
5: तो डॉक्टर मुक्ता से जब हमने जाना कि महिलाओं को मीडिया में जो उनका चित्रण किया जा रहा है उसकी पॉजिटिविटी के बारे में जाना, तो इसमें अब मैं डॉक्टर उत्सव कृष्ण मुरारी जी से बात करना चाहूंगी कि जिस तरह डॉक्टर मुक्ता जी ने बताया कि अब उनका पॉजिटिव पोर्ट्रेयल जो है वो हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि पुराने अगर हम सिर्फ 10 या 15 साल पहले ही जाएं तो वहां से लेकर अब तक कितना बदलाव आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं वो पहले सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई की जा रही थी या फिर सिर्फ सेक्सुअलिज्म के लिए यूज किया जा रहा था, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, सिनेमा हो, उन्हें एक बेहतरीन रोल देने के लिए, या फिर सिनेमा में अगर हम बात करें तो वो उनकी जो विमेन ओरिएंटेड मूवीज थी वो कितनी चल रही थी, या फिर उनमें उनको किस तरह के रोल्स दिए जा रहे थे, सोसाइटी में कितना एक्सेप्टेंस था। तो तब की एरा में, ज्यादा नहीं 10-15 साल पुरानी बात कर रही हूँ, और आज में आप कितना फर्क महसूस करते हैं?
7: देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप किसी महिला के बारे में सोचते हैं या सोचने के लिए शुरू करते हैं तो सोच नहीं समझ रखिए। आए दिन ऑटो के पीछे जो मेरा अभिमान, महिलाओं का सम्मान, ये महज शब्द नहीं है। यहाँ सिर्फ महिला की बात नहीं हो रही है, यहाँ उस जीवन की बात हो रही है जो प्रकृति आपको देती है। जो प्रकृति की बात आती है तो प्राकृतिक रूप से आप समझिए कि जितना एक पुरुष के पास ये राइट्स है उतना ही उस महिला के पास भी राइट्स है। पहले तो वो दायरे को समझना जरूरी है जो इंसान ने स्वयं ही बना दिया है, और जब इसको बनाता है तो समझिए आप एक दूसरे पर हावी हो। अब हावी हो जाते हैं तो ना वहाँ पे जीवन है ना मृत्यु है, यहाँ ना मीडिया रहती है ना मीडियम रहता है। माध्यम तो हम और आप हैं, और माध्यम बनने के साथ साथ संवाद भी जरूरी है। अब मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म सामने होकर आया जो वॉइस फॉर वॉइसलेस, यहाँ सिर्फ वॉइस फॉर वॉइसलेस वाली बात है। तो ये मीडिया की जरूरत क्यों पड़ी? जब मीडिया कोई चीज दिखाता है तब आपके दिमाग में ये चीज समझ में आती है कि नहीं, ये सही दिखा रहा है। ये चीज तो, ये तालीम तो आपको घर से ही शुरू करनी पड़ेगी कि आपकी सोच जो है वो सकारात्मक कब होगी। सोच सकारात्मक जब आप संवाद करेंगे, बिना संवाद के कोई भी चीज। अब चलते हैं 15-20 साल पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, नहीं थी, किताबों के माध्यम से हम लोग जानते हैं, या कई ऐसे शिक्षाविद हैं या कई ऐसे सोशल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं और कई ऐसे कार्य हुए हैं जो सामने आए हैं और उसके बारे में हम जान पाए हैं। लेकिन जानना ही सिर्फ जरूरत नहीं थी, समझ बनाना बहुत जरूरी है। जहाँ तक मीडिया एक महिला को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट करता आया है, उसको सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार से परसीव कर रहा है, किस प्रकार से ले रहा है, इसकी समझ वो सामाजिक दायरे में समझना बहुत जरूरी है। मीडिया समाज से है, समाज मीडिया से है, परस्पर मेलभाव बताना बहुत जरूरी है। तो यहाँ सिर्फ मुद्दा यह नहीं है कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के लिए साथ समझ, महिलाओं का कहिए प्राकृतिक रूप से जो संरचना है पुरुष से बिल्कुल अलग है। अब पुरुषों के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनके साथ सामंजस्य बिठाएं, समझ बिठाएं, क्योंकि बिना सामंजस्य और संवाद के कोई भी चीज संभव नहीं। तो मीडिया है तो मीडियम है, आप हैं तो हम हैं, इस तरीके से। तो महिलाओं, मेरा अभिमान, महिलाओं का सम्मान, ये कह देने से नहीं, इसको सार्थक करना हम सब जी, हम सब के लिए ये सबसे बड़ा दायित्व है।
5: उत्सव जी, जैसे कि आपने बात कही अभी कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ये आपने एक एथिकल बात कही है जो कि हमारे समाज में होनी चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि पिछले 15 साल में आप कितना डिफरेंस अभी देख रहे हैं, क्योंकि जब हम पहले के एडवर्टाइजमेंट्स देखते थे तो उसमें महिलाओं को एक खूबसूरत महिला होनी चाहिए, एक मतलब आज्ञाकारी महिला होनी चाहिए, वो महिला जो सिर्फ घर का काम कर रही है, अपने घर की जिम्मेदारियों को पूर्ण कर रही है, वहाँ पर किसी तरह की भी कोई कमी रह ना जाए, और अगर कमी रह रही है तो उसे सिनेमा हो या एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी ऑडियो विजुअल मीडियम हो, वहाँ पर उसे एक नेगेटिव रोल के तौर पर उसका पोर्ट्रेल किया जाता है। जैसे हम डेली सोप्स भी देख लें तो जो महिला बगावती है या फिर जो महिला ये सब चीजें नहीं कर रही है, घर की जिम्मेदारियां नहीं कर रही है, तो हम उसे एक नेगेटिव रोल में देखते हैं।
7: मैंने आपको इस बीच में एक शब्द कहा था कि मीडिया जो दिखा रही है वो आदमी सबसे पहले समझ जाता है, और यहाँ पे सामने बैठा व्यक्ति कुछ कह रहा है या समझ रहा है, उसको समझने में हम शायद पूरा जीवन लगा देते हैं। तो शायद संवाद की कमी है। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हम इतने टेक्नोलॉजिकल आइडियाज के साथ घिरे हुए हैं कि खाना तक ऑर्डर करने के लिए अपनी माँ से ना कह के अब जोमेटो हमारी माँ। तो बड़ा जो है द्वंद पैदा हो रहा है, इमोशन जो है, एक तरफ टेक्नोलॉजी आपको सहूलियत देता है, दूसरी तरफ रिलेशनल आइडियाज को समझने में द्वंद पैदा करता है। जरा सी दूरी हुई नहीं कि आपकी समझ गड़बड़ा जाती है और आप बेचैन से हो जाते हैं। मीडिया अच्छी बात है, रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा रहा है, बहुत तरीके से बढ़ा रहा है, लेकिन मीडिया का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया का भी एक दायित्व बनता है कि मीडिया, कई ऐसे मीडियाज हैं, मैं किसी मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन कई ऐसे मीडियाज हैं जो शायद समय से परे होकर के कई चीजों को प्रेजेंट कर देते हैं। आज सोशल मीडिया के दायरे में देखे तो फेक न्यूज का जो एक दौर चला तो उसमें फेक न्यूज लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा ही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, महिला सिर्फ महिला है, पुरुष सिर्फ पुरुष है।
3: जी, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो दोनों जो है वो एक डिफरेंट क्रिएचर्स हैं, तो उनको उन्हीं की तरह से सम्मान मिलना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं डॉक्टर सीपी रश्मि जी से। रश्मि जी, आज हम जब देख रहे हैं सिनेमा हो या एडवर्टाइजमेंट्स हो या फिर हम थिएटर भी देखते हैं, कोई भी ऑडियो विजुअल मीडियम हम देखते हैं, तो वहाँ पर हमें हमेशा खूबसूरत महिलाएं ही दिखाई देती हैं। वहाँ पर जगह नहीं है भद्देपन की, लेकिन महिलाएं तो वो भी हैं, राइट्स उनके भी हैं, टैलेंट उनके अंदर भी है। तो आप क्या सोचती हैं कि आज की मीडिया में जो बॉडी इमेज या ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरह के हैं, क्या उनमें कोई बदलाव देख रही हैं आप पिछले 15 सालों में?
8: किरण जी, बहुत ही ज्यादा बदलाव है। ठीक है, अभी आपने दो बातें करी, एक कि सिर्फ सुंदर महिलाओं को देखते हैं, बट जो कि डॉक्टर मुक्ता ने बोला कि कैसे चीजें बदली और कैसे मीडिया का पॉजिटिविटी उन्होंने दिखाई कि कैसे, मतलब आजकल आप देखेंगे प्लस साइजेस के भी एड्स आ रहे हैं। बट समवेयर डाउन द लाइन मैं आपको एक बात समझाना चाह रही हूँ कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड लिपस्टिक फेमिनिज्म जो कि आजकल चल रहा है, जिसमें हर औरत को बोला जाता है, जहाँ पे कि मैं डॉक्टर उत्सव की भी बात को लेकर आना चाहूंगी, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो औरत एम्पावर्ड है या सशक्त है जो कि किसी भी टाइम महीने के उन दिनों में भी सफेद पैंट पहन के दौड़ रही है। ठीक है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मीडिया आज के दौर में इज एवरीथिंग अबाउट कंज्यूमरिज्म। ठीक है, अब उस सेक्टर को, उसको क्या कहते हैं, टारगेट किया जा रहा है जो कि कंज्यूमर्स ने छोड़ दिया था। ठीक है, अब जैसे कि आज की तारीख में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं जहाँ पे हम बहुत ऑनलाइन कपड़े खरीदने लगे हैं। एक टाइम ऐसा था जब आप स्टोर पे जाते थे आपको एक्सेल और डबल एक्सेल कपड़े मिलना मुश्किल होते थे, वहाँ आज आपको 7XL से लेके 8XL तक के कपड़े आराम से मिल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ये समझा है कि ये भी एक क्या कहते हैं
3: ग्रुप है
8: जिसे आइडेंटिफाई किया गया, जिसे हम कपड़े बेच सकते हैं। हमारी इंडियन संस्कृति में एक बहुत चीज है कि कपड़ा वो पहनो जो कि आपको कंफर्टेबल हो, बट आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कि मॉडल्स होती हैं जो कि टाइट जीन्स पहनती हैं, 15XL तक की मॉडल होती हैं, चाहे वो देखने में अच्छी नहीं लगे, बट बोला जाता है कि ये नारी सशक्तिकरण का एक रूप है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो कि मैं ऑडियंस पे छोड़ती हूँ कि वो खुद सोचे कि क्या सही है गलत है, सबको पता है
3: जी।
8: बट कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो बॉडी इमेज की बात आ रही है उसको एक नए मार्केट को डेवलप किया जा रहा है
3: जी।
8: ठीक है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से डिप्रेशन बहुत हो रहा है, एक तरफ हम ये प्रमोट कर रहे हैं चाहे गोरा हो चाहे काला हो चाहे मोटा हो चाहे पतला हो सब अच्छा है, सब क्या कहते हैं हर औरत का एक रूप है, वहीं दूसरी तरफ फिल्टर्स को भी प्रमोट किया जा रहा है। अगर मैं मोटी हूँ या कोई पतला है तो अलग एक पर्टिकुलर एंगल से ही फोटो लेगा, उसको प्रमोट किया जा रहा है, कोई भी अपनी नेचुरल फोटो डालना नहीं चाह रहा है इंटरनेट पे। अगर आप किसी लोगों को डीपी के थ्रू जानते हैं और उन्हें रियल में मिलेंगे तो बहुत डिफरेंस होता है उसमें, स्पेशली फीमेल ज्यादा क्या कहते हैं फिल्टर्स का प्रयोग करती हैं।
3: तो आपको क्या लगता है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर महिलाओं में किसी तरह का प्रेशर है?
8: बहुत प्रेशर है, ऐसी बहुत रिसर्च की गई है, अगर आप जाएंगे इंटरनेट में पढ़ेंगे, इसकी वजह से बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं। लोग औरतें मतलब ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जहाँ पे लोग अपनी डीपीज में फिल्टर्स यूज कर करके, स्पेशली स्नैपचैट जैसे फिल्टर, उसमें बहुत तरीके के फिल्टर्स हैं, कि उन्होंने अपना जो ऑनलाइन स्पेशली जो इंटरनेट पे अपना रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से अपने आपको प्रस्तुत किया है वो इस तौर पे किया है कि वो अपने कुछ इंटरनेट के दोस्तों से मिलने से पहले जाके प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं। तो मतलब इतना असर पड़ रहा है। तो अभी क्या है ना, हम एक ऐसी जनरेशन बना रहे हैं जो कंफ्यूज्ड है, जहाँ पे हर बात को किया जा रहा है क्योंकि हर तरीके के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, एक फोन से लेके फिल्टर से लेके अलग तरीके के कपड़े से लेके मेकअप से लेके सब बिक रहा है, और हर चीज को बेचने के लिए एक इस तरीके के सूडो फेमिनिज्म जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें ऐसी ऐसी बातें फीड की जा रही है जिसका फेमिनिज्म या एक औरत होने से कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है ना, तो हमें ये बात जैसे कि डॉक्टर उत्सव ने कहा समझना जरूरी है, मीडिया में जो दिखता है वो नहीं होता है। ठीक है ना, मीडिया आजकल हम शायद वो उस जमाने का मीडिया नहीं रह गया जिसे बहुत मॉनिटर करके प्रस्तुत किया जाता था लोगों के सामने, आजकल इंटरनेट का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक स्नैपचैट इंस्टाग्राम, जिसमें कंटेंट कोई भी दे रहा है और हम उन कंटेंट को देख रहे हैं। तो जहाँ पे हमें हर चीज को बहुत सोच समझ के उस चीज को कहते हैं ना आगे ले जा, अगर कोई मुझे कहेगा ये करने से आप एम्पावर्ड हो, तो आपको अपने आप से 5 सवाल पूछने की जरूरत है, क्या मैं एम्पावर्ड होंगी ये करने से या नहीं होंगी। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर बॉडी, आपकी बॉडी क्या है, आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, आपके खुद के स्टैंडर्ड्स क्या है सुंदर होने के, ठीक है, क्या चीज आपको डिप्रेस्ड कर रही है, क्या चीज नहीं कर रही है, क्या चीज आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही है, क्या नहीं कर
5: रही है। डॉक्टर मुक्ता से मैं इसी के बारे में कॉन्टिन्यूटी में ही एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे कि डॉक्टर रश्मि ने बोला, एक वर्ड यूज किया सूडो फेमिनिज्म, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ओपनली किसी भी चीज के बारे में बात करना मीडिया में, ओपनली अपने आप को प्रेजेंट करना आजकल फेमिनिज्म की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई है, आप इससे कितना वो रखती हैं?
6: जी, अगर रश्मि जी की बात बोलूं तो मैं आई थिंक पूरा उन्हीं के लाइन में पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हुए बात करूंगी, लेकिन हाँ ये वो आप कहेंगे ना सामाजिक कॉन्सेप्ट है जो समय के साथ बदलते भी हैं। सूडो फेमिनिज्म जैसा भी एक कॉन्सेप्ट है जो हो सकता है आज उसकी एक डेफिनेशन है आने वाले समय में और उसमें और डेवलप हो डेफिनेशंस। तो अगर हम मीडिया में ही विमेन के पोर्ट्रेयल की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा बात करते हैं महिला सशक्तिकरण का। अब वो सशक्तिकरण जो है उसके अपने ही बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। हमें लगता है कि यदि महिला आजाद है, मतलब अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए आजाद है, वो सशक्त है। अगर वो अपना परिवार चलाने में इकोनॉमिकली अपने हस्बैंड की भागीदारी कर रही है तो वो सशक्त है, ठीक है। तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि हम सशक्तिकरण के नाम पे मीडिया में क्या परोस रहे हैं। इसमें जैसे आप देखें कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें या सिनेमा की बात करें ज्यादा, क्योंकि वहां पे एक हमें बड़ा कंटेंट मिलता है, एडवर्टीजमेंट में छोटे कंटेंट्स मिलते हैं। तो जैसे एक सीरीज है जिसके बहुत सारे एपिसोड्स चल रहे हैं या उसके फर्दर सीरीज चल रहे हैं, 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उसमें भी महिलाएं हैं, लेकिन क्या वहां जो पोर्ट्रेल है हम उसे सशक्तिकरण कहेंगे? मतलब बीइंग अ वुमन, मैंने उसका एक एपिसोड या दो देखे, मुझे वो लगा कि नहीं, वो पोर्ट्रेल ऑफ वुमन नहीं चाहती मैं, मतलब मैं भी एक महिला हूँ, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो, क्योंकि वो मैं उसके साथ एसोसिएट अपने आप को नहीं कर पाती। अगर मुझे लग रहा है कि समाज में महिलाओं को रिस्पेक्ट चाहिए तो मैं नहीं चाहूंगी कि ऐसी महिला मैं नजर आऊं, और मैं हूं भी नहीं, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाती उससे। तो अगर मीडिया की जिम्मेदारी है तो क्यों नहीं हम ऐसा कुछ पोर्ट्रे करें जिसमें जो महिलाएं हैं वो वैसी दिखें। सशक्तिकरण के नाम पर कुछ बहुत अलग तरीके से उन्हें पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए ना। तो मैं आई थिंक ये कहूंगी, आप सूडो जर्नलिज्म या सूडो सॉरी फेमिनिज्म, इसकी अगर हम बात करें तो मैंने आपको कहा ना सबका अपना देखने का नजरिया है, ठीक। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं, मैंने बहुत सारे पुरुषों को महिलाओं के लिए अच्छी बातें करते सुना है, और मैंने उन्हीं लोगों के अगेंस्ट लोगों को बोलते भी सुना है कि वो तो फेमिनिस्ट हैं। तो ये जो एक टाइट हो जाते हैं ना कि आप महिलाओं के बारे में बात करें तो आप फेमिनिस्ट हैं, ये विचारधारा भी नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक मीडिया कहीं ना कहीं कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हाँ जैसे कंज्यूमरिज्म है आप उससे पीछे नहीं हट सकते। हम सिर्फ कॉन्टेंट बनाए और इन रिटर्न हमारे को कुछ भी नहीं मिले, ये भी नहीं हो सकता। बट हाँ कितनी जरूरत है और वो कैसे पहुंचाया जाए, जैसे उत्सव जी ने भी बहुत अच्छे से बोला, उन्होंने बताया कि हमें समझ डेवलप करनी है, और आई थिंक यही सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया दोनों रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हाँ हमारा ऑडियंस इतना समझदार होना चाहिए कि जो उसे दिखाया जा रहा है उसे कैसे परसीव
5: करता है। बिल्कुल, डिस्कशन में हमारे साथ प्रवीण जैन जी भी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से हमारे बाकी अतिथियों ने बताया कि मीडिया में वुमेन को किस तरह से आज रिप्रेजेंट किया जा रहा है या फिर पहले से अब तक कितना बदलाव आया है, उसी को आगे ले जाते हुए मैं आपसे सिनेमा को लेकर सवाल पूछना चाहूंगी कि सिनेमा में जैसे कि पहले हम देखते थे तो औरतों के रोल्स होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ हीरो के आजू बाजू नाचने के या उनसे सिर्फ उनका लव इंटरेस्ट होना, सिर्फ इतना ही उनका होता था। लेकिन अब जो हम सिनेमा देख रहे हैं उसमें अब उन्हें बहुत ही सशक्त महिला के तौर पर भी दिखाया जा रहा है, मेन लीड्स में भी दिखाया जा रहा है, पूरी की पूरी सीरीज भी वुमेन ओरिएंटेड है जो कि बहुत हिट भी हो रही है। लेकिन अभी भी कई सारी सीरीज और मूवीज में हम देखते हैं कि उन्हें भोग की वस्तु के तौर पर ही दिखाया जाता है। तो आप किस तरह से अभी जान पा रहे हैं कि कितना फर्क पड़ा है?
9: मैम ऐसा है कि आज से 15-20 साल पहले भी जो सिनेमा बनता था उसमें भी कई जो फीमेल करेक्टर होती थी वो लीड रोल करती थी, जैसे श्रीदेवी थी, रेखा थी, उन्होंने फीमेल रोल करे हैं। हाँ, इम्सा पाटिल, बट स्मिता पाटिल को छोड़ दे तो श्रीदेवी के भी जो लीड रोल थे वो बेसिकली हीरोइन टाइप ही थे, उसमें उनका पोर्ट्रेल एक हीरोइन या गर्लफ्रेंड का रोल ही निभाने का होता था। बट अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और वेरियस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नए नए टाइप की वेरियस सीरीजेस आ रही है जहाँ पे वुमेन ओरिएंटेड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया जा रहा है। कि पहले होता था अगर एक लेडी फीमेल है तो वो फीमेल है, बट अभी दिखा रहे एक लेडी फीमेल भी है, वो गृहिणी भी है, माँ भी है, पत्नी भी है, और सारे रोल एक साथ निभा रही है और अपना काम कर रही है। मतलब आपको देख के लगेगा हाँ यार ये वुमेन तो मेरे आसपास ही कहीं होती हो, पर वो हो सकता है पुलिस वाली हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो या किसी बड़े इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में हो, वो दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी भी उसका जो प्रतिशत है अगर हम देखें कि मेल प्रतिशत जो फिल्में आती हैं ओटीटी आती है उसके मुकाबले कम है, और एक दो कुछ को छोड़ दिया गया, तो उनमें ज्यादातर कुछ में उनको ग्लैमरस ही दिखाने की कोशिश की जा रही है। इवन इन सम कॉप फिल्म तो उसमें भी दिखाया जा रहा है कॉप है, फीमेल है, स्ट्रॉन्ग है,
2: बट उसमें भी पूरा ग्लैमर
9: घुसा दिया जाए कि वो हैज टू बी लाइक स्लिम फिट फाइटर टाइप की। बट ऐसा जरूरी नहीं हर औरत स्लिम फिट वैसी ही हो, लेकिन वो पोर्ट्रे पुलिस वाली ना हो सकती हो, जबकि रियल लाइफ में हम देखे तो ऐसा नहीं होता है कभी। तो प्रतिशत कम है और इसमें समाज को औरतों को भी स्वीकार करने की जरूरत है।
2: आप ये कह रहे हैं कि जैसे अगर

0: साधारण पुलिस वाली को देखा जाए, हाँ। जो हमारे समाज में हम देखते ही हैं, हाँ। आते जाते जाए, वो ट्रैफिक पुलिस में हो, हाँ। या फिर किसी इन्वेस्टिगेशन में हो, तो उनका जो आउटफिट है, हाँ। वो सेम आउटफिट आप मूवी में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जबकि मेल्स के लिए हम यूज करते हैं, पर फीमेल्स के लिए जो आउटफिट यूज किया जाता है वो उसमें भी वो लोग फैशन ग्लैमर और इस तरीके की चीजें डाल देते हैं,
1: फिटनेस को दिखाया जा रहा है। जबरदस्ती भाई, आप कॉप, एक जो इंटेलिजेंट कॉप होता है उसकी बुद्धि से उसको इंटेलिजेंट माना जाता है, ना कि उसकी फिटनेस, अच्छी चीज होती है लेकिन वो एक प्रायोरिटी नहीं होती कि वो स्लिम फिटी हो हमेशा। तो ये मेरे को लग रहा है रीजन है कि अभी भी मीडिया में इस तरह का पोर्टल कम किया जा रहा है, जो कि इसको बढ़ाने की जरूरत है, और लोगों को भी ऐसे अपनी समझ इस बारे में, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि समझ विकसित करने की जरूरत है, जो कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं।
0: जी, आपने बहुत सही बात करी प्रवीण जी। उत्सव जी, आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से हम टीवी न्यूज चैनल्स में देखते हैं, तो टीवी न्यूज चैनल में हमने शुरू से ही देखा है कि विमेन जो है वो सॉफ्ट न्यूज कवर कर रही है, पेज 3 न्यूज कवर कर रही है, मेल्स जो है वो हार्ड न्यूज कवर कर रहे हैं, या फिर औरतें जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के लिए बनी हुई है कि कैमरे के सामने स्क्रीन पे बैठना है। उनमें भी बहुत सिलेक्टेड विमेन ही है जो आज ऊंचाइयों पर है, और वो उनके साथ भी अगर हम देखा जाए तो उसमें भी खूबसूरत महिलाएं ही हैं ज्यादातर। तो आपको ये क्या लग रहा है कि अभी भी हमारा यहाँ पे जो ब्यूटिफिकेशन है या फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन है या बॉडी इमेज जिस तरह की है, यही चीज आज भी काम कर रही है?
2: जहाँ तक आपने कहा खूबसूरत होना, एक न्यूज एंकर जो मैं डीडी नेशनल पे सुना करता था, सुकन्या बालाकृष्णा, जिनको देख के ही ऐसा भारतीयता की जो महक होती है जिस तरीके से वो, लेकिन आज मीडिया ने, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मीडिया जो चीज आपको देगा वही आप कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे कई ऐसी कम्युनिकेशन की थ्योरीज अप्लाई करने के बाद, बेतुके ऐसे कई सवाल खड़े करने के बाद, क्योंकि कई मीडिया सिर्फ टीआरपी को लेकर काम कर रही होती है, वो संजीदा नहीं है महिला को लेकर के, और जहाँ कोई संजीदगी नहीं है वहाँ पे विचार नहीं पनपेगा। पहले विचारों के साथ अभ्यास किया जाता था, जहाँ अभ्यास खत्म हो गया तो आप कुछ भी परोस सकते हैं, और सामने वाला व्यक्ति जो है उसके पास आज की डेट में समय नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इन शॉर्ट ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अखबार जो है, अब लोग इन शॉर्ट में खबरों को जानना देखना पसंद करते हैं, क्योंकि व्यक्ति अब समय नहीं देना चाह रहा, ना ही रिश्तों को, ना ही अपने जीवन को, ना ही अपने कार्यशैली को। कार्यशैली ही उसको जो है चला रही है, अपने जीवन को चला रही है, और वो फिर जो भी कंज्यूम करता है वही वो सामने निकाल के देता है। तो सिर्फ उसका दिनचर्या जो जब शुरू होता है तो कई ऐसी चीजें, कई ऐसे सवाल, तो मीडिया जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व अब और बढ़ गया है। उसका जैसे जैसे दायरा बढ़ता जा रहा है उसका दायित्व बढ़ता जा रहा है। मुक्ता जी ने कहा कि कई ऐसे जो है समाज में ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद एक तरफ आप समझ पा रहे हैं कि महिला सशक्त हो रही है, लेकिन क्या वह सही कंटेंट दे रहा है कि नहीं? ओटीटी का एक दायित्व होता है, 18+ कंटेंट है। 18+ कंटेंट का मतलब, कहने का मतलब यह है कि उसमें आप भद्दापन भी दिखा सकते हैं, अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब 18+ कंटेंट आप ये तो नहीं जान पा रहे ना कि कौन कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे ओटीटी हो चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति का एक विश्वास और एक दायित्व होना चाहिए कि वह जहाँ कहीं भी महिला, तो उसको महिला के नाम से ना रिप्रेजेंट करे, उसको पहले जीवन के नाम से रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो पहले जीवन है, महिला बाद में है। मेरा मानना है कि अब पशु पक्षी को भी आप, वो पुरुष है, वो नर है, वो मादा है, पहले जीवन देखिए, पहले श्वसन क्रिया देखिए कि वह चलता फिरता एक जीवन है, तब आप समझ पाएंगे कि वह महिला नहीं, पहले जीवन है। शरीर के आवरण से कौन खूबसूरत है, कौन भद्दा है, इसको जान लेने से शायद आपको क्षणभंगुर आत्म तृप्ति हो सकती है, लेकिन आप खुद में जब एनालाइज करेंगे जीवन के उन आखिरी पलों में, तो वो सारी जो है कृतियां आप तक आएंगी, आपका आएंगी, आपके नजरों के सामने आएंगे। तो महिला कोई उपभोग या संभोग या कोई भी ऐसा शब्द यूज कर सकते हैं, मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है कि मैं शब्दों को लेकर के, हाँ, संजीदा हूँ, शब्दों को लेकर संजीदा हूँ, लेकिन हाँ, महिला सिर्फ एक दायरे के लिए नहीं, महिला महिला है, पुरुष पुरुष है, फिर कहता हूँ जीवंत है, जीवन है, श्वसन क्रिया उसमें भी है। व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे तो महिला का सम्मान या पुरुष का सम्मान, फेमिनिज्म का मतलब यह नहीं कि फेमिनिज्म ही आप एक महिला होकर के, फेमिनिज्म का मतलब है जहाँ बोथ द जेंडर्स आर बीइंग रिप्रेजेंट एज इक्वल,
0: राइट,
2: तो दोनों जेंडर को समान रूप से देखें। अब तीसरे जेंडर की बात आती है तो उसको भी समान रूप से देखिए। हाँ, क्योंकि लड़ाई ये उसकी नहीं है, लड़ाई इस मानव सभ्यता और समाज के साथ हम सब की लड़ाई है। जिस दिन ये दायित्व हम सब ने उठा लिया तो शायद हमें इस चीज का डर ही नहीं रहेगा कि हमारी घर से बहने माताएं बहने बाहर जा रही हैं और उनके साथ जो है कोई ऐसा अभद्र व्यवहार होगा। तो ये दायित्व हम सब का बनता है।
0: जी धन्यवाद आप सभी का। आज जो हमने बात यहाँ पर की है उसमें एक बात तो निकल कर यही आई है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। कुछ चीजें पॉजिटिविटी की तरफ भी जा रही हैं, सकारात्मक भी हैं, कुछ चीजें नकारात्मक भी हैं, लेकिन अभी भी हमें औरतों की स्थिति को मीडिया में सुधारने की बहुत जरूरत है। इसके लिए डॉक्टर उत्सव जी हैं, डॉक्टर मुक्ता मर्तोलिया जी हैं, या फिर डॉक्टर सीपी रश्मि हैं, या प्रवीण जैन जी हैं, सभी ने एक ही बात कही है कि समाज को अभी बहुत सुधरना है, बहुत समझना है, बहुत सीखना है। तो पहल खुद से होती है, सबसे पहले हमें अपनी सोच को सुधारना है और फिर उसके बाद हम किसी का भी जो चित्रण है वो एक जीवंत आत्मा के तौर पर हम कर पाएंगे, एक जीव के तौर पर कर पाएंगे, हम उसे महिला या पुरुष के तौर पर नहीं करेंगे। तो महिला या पुरुष कोई भी है, वो एक जीव है और उसी के हिसाब से वो क्या डिजर्व करता है अपनी लाइफ में, यही हमें चित्रण हमेशा करना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो या फिर कोई भी सामाजिक व्यवस्था हो वहाँ पर। सभी अतिथियों का हमारे इस शो में आने के लिए और अपने विचार इस विषय पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हम फिर से आएंगे लेकर कुछ ऐसे ही विषय जिसमें कि हमारे साथ इसी तरह के एक्सपर्ट होंगे और वो अपनी राय आप तक रखेंगे। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। बने रहिए सुनो शारदा 90.8 के साथ। मैं थी आपके साथ किरण। नमस्कार।
5: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: स्मार्ट की सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ गई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
2: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
3: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज़ करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
2: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
1: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।
4: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
5: फिर माँ क्या कहती थी?
6: कहती क्या थी, बस काजल का टीका माथे पर लगाकर बलैया लेती थी कि उसके लाडले को किसी की नजर न लग जाए।
5: जानते हैं बाबूजी, श्याम सावरे भी अपनी माँ से ऐसा ही पूछा करते थे।
6: क्या?

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर इंफ्लामेटरी गुण होते हैं और ये तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं।

छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की, किनुआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित है और जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की, फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट

0: फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका अभिनंदन उमंग कार्यक्रम में। मैं विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मन शांत रख कर ही आप सही गलत का पता कर सकते हैं। क्रोध में केवल वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं।
1: वह क्या बात है, क्रोध में केवल वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर और प्रेरणादायक विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी लिखते हैं,
1: नमस्कार अजीत जी और बिमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम की ये भी जानिए श्रृंखला में गर्म पानी के स्रोतों के बारे जानकारी सुनकर बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। आपने इसमें तत्ता पानी का विशेष रूप से जिक्र किया जिसे सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तत्ता पानी मेरे करसोग क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये मंडी जिले और शिमला जिले की सीमा पर स्थित है।
2: जी, रेडियो कार्यक्रम में ये सब सुनकर मुझे कितना अच्छा लगा आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
1: आप आगे पूछते हैं,
2: विमलेश जी आप तत्ता पानी कब आई थी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ?
1: तो विमलेश जी आप इसका जवाब दें।
2: योगेश ठाकुर जी, आपका संदेश पाकर हमें बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओ, अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशा इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, भाई साजिद छोटू नाहिद और पापा हबीद अहमद इदरीसी लिखते हैं,
2: अजीत सर और विमलेश मैम को हम सबका आदर और सम्मान। NCERT की उमंग के सारे ही प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। 29 तारीख को आपने गंगा नदी के जल के स्वच्छ रहने की जानकारी दी, सुनकर बहुत अच्छा लगा।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलो दास मानिकपुरी, जय दास मानिकपुरी और देवेश दास मानिकपुरी जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारा कार्यक्रम इतने ध्यान से सुनते हैं। अब स्वागत है आप सबका हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे एक विशेष परिवहन के माध्यम पर।
1: श्रोताओं, एक समय था जब हमें दूर की यात्रा करने में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब विज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि हजारों किलोमीटर की दूरी बस कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है।
2: जी।
1: जरा सोचिए तो क्या है परिवहन का वो माध्यम।
2: आपके मन में यदि हवाई जहाज का नाम आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं।
1: जी,
2: तो आइए आज जानते हैं सबसे पहले हवाई जहाज के इतिहास के बारे में। वैसे हमारे शास्त्रों में और दुनिया के और भी अन्य साहित्यों में उड्डयन की चर्चा मिलती रहती है।
1: जी श्रोताओं, पुष्पक विमान के बारे में हम सब जानते हैं और उड़न खटोले के बारे में भी, लेकिन आज हम बात करेंगे आधुनिक हवाई जहाज के आविष्कार के बारे में। तो प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि उड़ने का विचार मनुष्य के मन में कब आया होगा?
2: मुझे लगता है कि आदि मानव के काल में ही इसका विचार आ गया होगा। जब मानव ने पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखा होगा तो
1: उसने भी जरूर सोचा होगा कि काश मैं भी उनकी तरह उड़ पाता। बहुत लंबा समय निकल गया।
2: जी।
1: विमान बनाने की दिशा में बहुत से शोध हुए।
2: जी।
1: इस बीच मनुष्य ने गर्म गैस के गुब्बारे से भी उड़ान भरी, लेकिन
2: सबसे पहले आधुनिक हवाई जहाज का आविष्कार ऑर्विल और विल्बर राइट नामक भाइयों ने किया। हम उन्हें राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने विमान बनाने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए।
1: श्रोताओं, वे कई बार असफल भी हुए, लेकिन आखिर आ ही गया वो दिन। स्थान था अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में बसा एक रमणीक नगर किटी हॉक, और दिन था 17 दिसंबर 1903
2: जब दुनिया के इतिहास में सबसे पहले आधुनिक विमान ने उड़ान भरी। आज विमान लगातार घंटों तक उड़ सकते हैं।
1: श्रोताओं, महासागरों को पार करके हजारों किलोमीटर की उड़ान ये भर सकते हैं, लेकिन एक रोचक बात आपको बता दें, दुनिया के पहले आधुनिक विमान ने सबसे पहले मात्र 120 फुट की ही उड़ान भरी थी।
2: जी।
1: ये विमान लगभग 12 सेकंड तक ही हवा में रहा।
2: दुनिया के इस पहले विमान को उड़ा रहे थे ऑर्विल राइट। उन्होंने विमान की तकनीक को थोड़ा और सुधारा और उसी दिन उन्होंने 4 उड़ानें भरी।
1: श्रोताओं, चौथी उड़ान बहुत सफल रही क्योंकि इसमें विमान 852 फुट तक उड़ा और लगभग पूरे 1 मिनट तक हवा में रहा।
2: जी।
1: इसे विल्बर राइट ने उड़ाया था।
2: जी।
1: इस प्रकार एक ऐसा इतिहास रचा गया जिसने हमेशा के लिए दुनिया के परिवहन का इतिहास ही बदल दिया।
2: बाद में इसमें बहुत सुधार हुए, तकनीक विकसित की गई, परिणाम स्वरूप आज हमारे पास एक से एक उन्नत विमान है।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आधुनिक विमान के आविष्कार की। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, आधुनिक विमान का आविष्कार किस देश के किस स्थान पर हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: आधुनिक विमान का आविष्कार किस देश के किस स्थान पर हुआ था?
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप अपना उत्तर जल्द से जल्द हमें भेजिए और साथ ही साथ
2: इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ अब आ गई है बारी हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम द क्रो।
2: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक जानी पहचानी सुंदर लोक कथा के माध्यम से संदेश दिया गया है कि हमें किसी की प्रशंसा से तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, अपितु उसका ठीक से विश्लेषण करना चाहिए।
3: हेलो चिल्ड्रन।
4: हेलो मैम।
5: हेलो मैम।
3: हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल?
4: वी आर फाइन मैम।
5: आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू?
3: I'm good, thank you so much, Vanya. All right, so children, today I'm going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
5: Okay, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes, ma'am.
5: Pets are so lovely.
3: Right, Soham.
6: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
6: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
7: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
8: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
5: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
5: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
5: Ma'am, parrot.
3: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
9: Any guesses?
3: Okay, I'll give you a clue. It calls. Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
4: Yes, ma'am.
5: It will be fun.
3: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black.
4: As you know.
3: How to be beautiful. He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it. In his tail. Then he found another. He picked up. All without fail. He stuck them. In his wings. Put one on his head. I am now beautiful. He danced and said. The other crows. Laughed at him.
10: Oh, what a fool you are.
4: You are beautiful in black.
10: We love you. For what you are.
3: So children, now listen to the same poem and a lovely song.
4: Okay.

0: सन 1857 ईस्वी अपने महल में रानी लक्ष्मीबाई चिंतित अवस्था में बैठी हैं। रानी के सामने नाना साहब और कुछ विश्वासपात्र सामंत भी चिंतित बैठे हैं। तभी रानी उठ खड़ी होती है।
1: अंग्रेजों की विशाल सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया है। हमारी सेना के अनेक योद्धा वीरगति प्राप्त कर चुके हैं। कुछ सरदार अंग्रेजों से जा मिले हैं। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, एक ही रास्ता कि हम किले का फाटक खोल दें और अंग्रेज सेना को युद्ध के लिए ललकारें।
2: रानी हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं।
1: झांसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान का अवसर आ गया है।
3: रानी माँ, झांसी पर अपने प्राण न्योछावर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं।
2: बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार
3: हैं। दामोदर राव की सुरक्षा का प्रबंध भी हम कर लेंगे, लेकिन जानबूझकर अंग्रेजों की सेना के सामने जाकर प्राण देने में कोई समझदारी नहीं है। उचित तो ये होगा कि किसी तरह किले से सुरक्षित निकलकर हम फिर से सेना को संगठित करें।
4: ठीक है,
2: बिल्कुल ठीक कहा।
1: मैं आपकी योजना से सहमत हूँ, लेकिन अब इस अंग्रेज सेना का घेरा तोड़कर किले से बाहर निकल पाना आसान नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजों के भेदिये महल के भीतर भी हैं। ये गद्दार हमारी छोटी छोटी बातें अंग्रेजों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चूहे की तरह बिल में घुसे रहने से तो अच्छा है हम शेर की तरह शत्रु पर टूट पड़े।
5: महारानी, आप जैसी वीरांगना को हम मरने के लिए अंग्रेजों की सेना के सामने नहीं धकेल सकते। मैं सामंत की बात से सहमत हूँ। आपका ये निर्णय वीरोचित तो है, पर रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं है। महारानी,
3: ठीक कहा, बिल्कुल।
5: हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। महारानी, आपकी पराजय केवल रानी लक्ष्मीबाई की पराजय नहीं होगी, वो झांसी की पराजय होगी। और यदि झांसी इतनी आसानी से पराजित हो गई, तो पूरे भारत में चल रहा स्वाधीनता संग्राम ही खतरे में पड़ जाएगा। महारानी, सबकी निगाहें आप पर टिकी है। महारानी,
2: नाना साहब ठीक है।
6: जी रानी साहबा,
2: सबकी निगाहें आप पर टिकी है।
6: जी रानी साहबा,
2: जी रानी मां, सुझाव बिल्कुल सही है,
6: बिल्कुल सही है।
7: महारानी की जय।
1: कहो दूत, क्या समाचार लाए हो?
7: रानी माँ, समाचार शुभ नहीं है। अंग्रेजों की सेना का घेरा झांसी के चारों ओर बहुत कड़ा हो गया है।
1: ओह,
7: उन्होंने आपको जिंदा ही पकड़ने की ठान रखी है।
1: ओह, उनकी ये हिम्मत। दूत, तुम जाओ और घटनाओं पर कड़ी निगाह रखो।
7: जी महारानी जी। महारानी की जय, महारानी की जय।
1: नाना साहब।
5: जी महारानी।
1: मैं किसी भी हालत में अंग्रेजों की बंदी नहीं होना चाहती। मैं झांसी की रक्षा करते करते शहीद हो जाना पसंद करूंगी। नाना साहब, आप आदेश दें, हम अंग्रेजों पर टूट पड़ना चाहते हैं।
2: महारानी ठीक कहती है,
8: बिल्कुल ठीक कहती है।
9: हम अंग्रेजों पर टूट पड़ेंगे।
10: हम अंग्रेजों पर टूट पड़ेंगे।
11: महारानी ठीक कहती है।
1: महारानी की जय। आओ आओ झलकारी बाई, तुम ठीक समय पर आई हो। कहो, तुम्हारी सेना की क्या तैयारी है?
12: रानी माँ, नारी सेना अगली पंक्तियों में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। किंतु
1: किंतु किंतु क्या? निसंकोच होकर कहो।
12: गुस्ताखी माफ हो रानी माँ,
1: मुझे इस निर्णायक युद्ध के लिए आपके वस्त्र, आपकी पगड़ी और आपकी कलगी चाहिए।
4: ठीक है झलकारी, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। आओ हमारे कक्ष में चलो।
1: जी चलिए महारानी साहिबा।
6: झलकारी को महारानी की पगड़ी क्यों चाहिए? अरे महारानी उसे अपने कक्ष में क्यों ले गई?
8: महारानी की पगड़ी
6: कुछ समझ में नहीं आया।
8: के लिए महारानी की पगड़ी?
6: अरे ये तो महारानी आ गई, वापस भी आ गई।
1: देखा आपने, अब अधिक सोचने का समय नहीं है, मैदान में उतरने का समय है।
0: ये आदेश दे रही थी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में सज्जित झलकारी बाई।
9: ये तो झलकारी बाई है।
13: अरे झलकारी बाई, अरे देखो तो बिल्कुल लक्ष्मी बाई।
6: अरे झलकारी बाई,
13: बिल्कुल लक्ष्मी बाई जैसी लग रही है।
5: हाँ, अरे झलकारी बाई, तुम तो हूबहू लक्ष्मी बाई लग रही हो।
0: तभी रानी लक्ष्मी बाई ने प्रवेश किया।
1: आप ठीक कह रहे हैं नाना साहब, महारानी की जय। मेरा रानी माँ का हम शक्ल होना शायद आज ही सार्थक हो सकता है।
5: झलकारी बाई, तुम्हारी योजना क्या है ये तो बताओ।
1: मेरी योजना ये है कि मैं अपनी सेना लेकर किले के मुख्य द्वार पर अंग्रेजों को उलझा कर रखूंगी। इससे उनका पूरा ध्यान मुझ पर बना रहेगा। वो रानी समझकर मुझे घेरने का प्रयत्न करेंगे। इतने में रानी माँ दामोदर सहित अपने वीर सैनिकों को लेकर महल से दूर निकल जाएंगी।
6: ठीक है, ये रणनीति ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा महारानी,
13: बिल्कुल ठीक है।
1: लेकिन झलकारी बाई, मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में कैसे जाने दूं? रानी माँ, आप ही ने हमें सिखाया है कि वीरांगनाएं मौत से नहीं डरती। हम प्राणों की बाजी लगा कर भी झांसी की रक्षा करेंगे।
5: झलकारी बाई ठीक कहती है महारानी, अब आप देर मत कीजिए। झलकारी बाई जैसा कहती हैं वैसा ही कीजिए।
14: महारानी की जय,
15: महारानी की जय।

0: लक्ष्मीबाई के वेश में झलकारी बाई अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ती है। अंग्रेजी सेना को काटती हुई झलकारी बाई आगे बढ़ती है।
1: झांसी अमर रहे।
0: नारी सेना भी शत्रुओं को काटती हुई युद्ध करती है। झलकारी बाई के शरीर पर अनेक घाव लग जाते हैं और वो निढाल होकर गिर जाती है। ये देखकर जनरल अपने सैनिकों को हुक्म देता है,
2: सिपाहियों, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना है।
3: यस सर।
2: चारों से खेलो इसे।
4: झांसी की रानी, तुम बहुत बहादुर हो। हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हो, लेकिन अब तुम हमारी बंदी हो।
1: जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है। वो जीवित रहने तक स्वतंत्र ही रहेंगी। रानी झांसी की जय।
2: सिपाही
3: सर,
2: इधर कोई है जो इसे पहचान आंटा हो?
5: जी जनाब। ये तो झलकारी बाई है। जनरल, आपका शक ठीक है, ये तो लक्ष्मी बाई नहीं है, उनकी हम शक झलकारी बाई है।
2: झलकारी बाई
5: है।
2: व्हाट? झलकारी बाई? वाओ, इस औरत ने तो कमाल कर दिया।

झलकारी बाई का मृत शरीर धरती पर पड़ा था और जनरल रोज अवाक खड़ा एक वीरांगना को मन ही मन सलाम करता रहा।

0: और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में, तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। आप इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 21वीं कड़ी हवा में जल। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने वातावरण के बारे में जाना। हमारी धरती हवा यानी वात का आवरण ओढ़े है। वायुमंडल धरती पर गर्माहट बनाए रखता है। सूरज की पराबैंगनी किरणें और अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्काओं से हमारी रक्षा करता है और वायुमंडल की अलग अलग परतें किस प्रकार अपना अपना काम करती हैं। तो लीजिए आगे सुनिए विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 21वीं कड़ी हवा में जल।

0: वसुधा, अरे क्यों भाई, छुट्टी का दिन होने से आज भोजन की भी छुट्टी है क्या?
1: नहीं जी, भोजन से छुट्टी कैसे हो सकती है भला। हाँ, भोजन में देरी जरूर हो सकती है।
0: देरी? अरे भाई, अब और कितनी देर है खाना तैयार होने में? मेरे पेट में तो चूहे टुकुर टुकुर टुकुर कूदने शुरू हो गए।
1: बस आप बच्चों को भी खाने के लिए बुला ही लीजिए, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा।
0: अरे हाँ हाँ, अभी बुलाता हूँ मैं। सृष्टि, मानव, खाना खाने के लिए आओ जल्दी भाई।
2: लो पापा, मैं तो आ गई।
3: हाँ।
2: पापा, ये कार्टून शो देखकर आता हूँ, आप लोग खाना शुरू कीजिए।
3: अरे मानव, सुबह से ही तो टीवी देख रहा है, खाना तो टाइम पर खा ले।
0: अरे हाँ मानव, खाना समय पर खाना चाहिए। चलो जल्दी आओ खाने के लिए, कार्टून शो तो दिन भर चलते रहेंगे।
2: क्या पापा, एक संडे का दिन ही तो मिलता है मुझे पसंदीदा कार्टून शो देखने के लिए, उसमें भी आप मुझे टीवी नहीं देखने देते हो।
0: बेटा पहले खाना खा ले, फिर टीवी देखते रहना। चलो आओ जल्दी आओ।
2: अरे आप शुरू तो कीजिए, मैं अभी आता हूँ।
3: आज तो खाने की बड़ी अच्छी महक आ रही है।
0: सृष्टि बेटा, महक तो आएगी ही, आज तुम्हारी मम्मी ने रविवार का स्पेशल खाना जो बनाया है।
3: अच्छा, तो आज मम्मी ने खीर बनाई है, क्यों मम्मी?
1: हाँ, तुम सभी को खीर बहुत अच्छी जो लगती है ना, इसीलिए।
3: खीर का सबसे ज्यादा दीवाना तो मानव है।
2: खीर? अरे वाह मम्मी, मैंने सुना है कि आज खीर बनी है।
3: लो आ गया मानव।
2: मम्मी खाना तैयार है ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है।
1: हाँ बेटा, तू हाथ पैर धोकर आ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ।
3: मम्मी खाने के लिए विवेक भैया का इंतजार कर लेते हैं ना, सभी साथ में खाना खाएंगे।
1: पर विवेक तो 3-4 बजे तक आएगा ना।
0: हाँ सृष्टि, आज विवेक के आने का कोई समय निश्चित नहीं है। उसके दोस्त वरुण के यहाँ हैंडपंप लग रहा है, अरे वो तो काम पूरा होने पर ही आएगा।
2: मम्मी आज खीर बनाई है ना?
1: खीर के साथ पूरी भी है माना।
2: अरे वाह, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, खीर और पूरी।
3: अच्छा मानव, यहाँ तेरे मुंह में पानी आ रहा है और उधर नल से पानी बह रहा है।
0: मानव फिर नल खुला छोड़ आया? तुम्हें कितनी बार समझाया है नल को ठीक से बंद करके आया करो।
3: ना जाने इसे किस बात की जल्दी रहती है कि नल अच्छे से बंद ही नहीं करता।
2: दीदी मैं तो नल बंद करके ही आया था।
3: नल बंद करके तो आया था, मगर आधा, जिससे बहुत पानी बह रहा था।
0: बेटा मानव, लोग तो बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं, और एक हमारा मानव है कि पानी की कीमत समझता ही नहीं, जब देखो नल ठीक से बंद ही नहीं करता।
1: अरे खाना लगा दिया है, खाना खा लो जल्दी से, बहस बाद में कर लेना। चलो बैठो मानव।
0: लो भाई लो। वाह भाई, वसुधा वेरी गुड।
2: क्या खीर बनाई मम्मी, वाह। मम्मी आज तो खीर का रंग पीला दिख रहा है।
3: पीला नहीं मानव, केसरिया।
1: मानव, खीर में केसर डालने से खीर का रंग केसरिया हो गया है, समझा?
0: क्या बात है वसुधा, आज तो केसरिया खीर बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है भाई।
1: खीर में सूखे मेवे जो मिलाए जी।
0: और वसुधा इसी बात पर ठंडा पानी पिला दो बस।
2: और मम्मी मुझे भी पानी का दूसरा गिलास देना।
1: दूसरा गिलास? क्यों, क्या हो गया?
2: वो इस गिलास की बाहरी परत गीली है, जरूर इस गिलास में बारीक छेद होंगे।
3: छेद नहीं है मानव।
2: छेद नहीं है तो फिर गिलास बाहर से गीला क्यों हो गया?
0: अरे मानव, ये तो हमारे आसपास की हवा में मौजूद पानी है।
2: अरे ये क्या कह रहे हैं आप, हमारे आसपास की हवा में पानी मौजूद है?
3: हाँ मानव, गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई देने वाला ये पानी वातावरण में उपस्थित नमी ही तो है।
0: मानव, और वातावरण की इस नमी को जल वाष्प या आर्द्रता भी कहते हैं।
2: पापा मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आती है।
3: पापा, जब तक मानव का ध्यान खीर खाने में है, तब तक इसे कुछ समझ नहीं आने वाला।
2: दीदी क्या करूं, मुझे खीर इतनी अच्छी लगती है कि खीर खाते हुए मुझे दूसरी बातें समझ ही नहीं आती।
0: तो पहले खीर खाने
1: ना। बात है ना मानव बेटा, खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ही ध्यान देना चाहिए। गुड बॉय।
0: चलो चलो फिनिश करो जल्दी से, मेरा खाना तो हो गया, मैं तो चला टहलने।
2: मम्मी पेट तो मेरा भी भर गया पर मन नहीं भरा।
3: तेरा तो मन कभी नहीं भरेगा।
2: क्या दीदी आप भी।

0: अरे मानव देखना तो कौन आया।
1: मम्मी जरूर विवेक भैया होंगे।
2: भैया आप बहुत लेट हो गए आने में।
0: अरे विवेक तूने तो 2 बजे का आने का बोला था, अब तो 5 बजने का।
3: अरे मम्मी वरुण के यहाँ हैंडपंप का काम 4 बजे खत्म हुआ इसीलिए लेट हो गया।
2: भैया तो क्या आप हैंडपंप लगा रहे थे?
3: अरे नहीं मानव, दरअसल वरुण के मम्मी पापा आज सुबह ही किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे, इसीलिए अकेले होने की वजह से वरुण ने मुझे बुला लिया।
2: भैया तो क्या वरुण को अकेले में डर लगता है?
3: अरे मानव वरुण और मुझे एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना था इसलिए मैं वरुण के घर गया था।
0: विवेक खाना खा ले बेटा, चल।
3: मम्मी खाना तो मैंने वरुण के यहाँ खा लिया था। हाँ पानी पीऊंगा, बड़ी प्यास लगी है।
0: अच्छा अच्छा मानव विवेक भैया के लिए पानी लेकर आओ।
2: मैं
0: हाँ तुम जाओ
2: जी।
3: अच्छा सृष्टि पापा कहाँ हैं?
2: भैया पापा आसन लगा रहे हैं।
3: आसन इस समय? पापा तो प्राणायाम और आसन सुबह करते हैं।
2: भैया मैं योग आसनों की नहीं बल्कि निद्र आसन की बात कर रही हूँ।
3: सृष्टि तुम भी ना सीधे सीधे नहीं कह सकती थी, पापा सो रहे हैं।
2: हाँ भैया दुनिया गोल है इसीलिए कभी कभी गोल मोल बातें भी कर लेनी चाहिए।
3: बिल्कुल।
2: भैया ये लो पानी और हम सब के लिए मम्मी चाय लेकर पधार रही है।
0: लो बच्चों गर्मा गर्म चाय।
3: लाओ मम्मी।
2: मुझे इस वाले कप में चाहिए।
0: इसी में लो।
3: क्या बढ़िया चाय बनाई मम्मी, पर आज वरुण ने बहुत अच्छी चाय बनाई थी।
2: अच्छी मतलब बिना पानी वाली है ना विवेक भैया?
3: हाँ सृष्टि, वरुण ने चाय में तुलसी के पत्ते, अदरक और इलायची भी डाली थी और हाँ दूध में पानी भी नहीं मिलाया था।
0: अरे पानी से मुझे ध्यान आया, हे मानव तू किचन का नल ठीक से बंद करके नहीं आया था, नल से पानी बह रहा था।
3: मानव जल की बूंद बूंद अनमोल है इसलिए हमेशा नल को सही से बंद करने की आदत डालो।
2: अरे आप सभी लोग पानी को लेकर इतना परेशान क्यों होते हो? कहीं मेरी टीचर बता रही थी कि धरती के लगभग 3/4 भाग में पानी है,
1: लेकिन मानव इस जल की 97% मात्रा समुद्री पानी के रूप में है जो खारा होने के कारण हमारे पीने व खेतों में सिंचाई के काम में उपयोग नहीं किया जा सकता।
3: और बाकी 3% जल का भी अधिकतर भाग ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में जमा है।
2: भैया खारा जल तो नहीं पर हाँ बर्फ में जरूर खा सकता हूँ।
0: बच्चों चाहे दुनिया में जल की कितनी भी मात्रा हो पर हमारी कॉलोनी में तो नल एक दिन छोड़कर ही आता है, पानी की जरूरत पड़ने पर बेचारे हमारे विवेक को पड़ोस के हैंडपंप से पानी लाना पड़ता है।
3: क्या मम्मी?
2: मम्मी खाना खाते समय दीदी कुछ हवा में मौजूद नमी की बातें कर रही थी ना, तो क्यों ना हम उसी हवा के पानी से टंकी को भर लें?
1: मानव ये इतना आसान होता तो हमारे देश में लाखों लोग सुबह से शाम तक पानी के लिए ना भटकते होते।
0: बिल्कुल, पहाड़ों और रेगिस्तानों में तो महिलाओं का आधा जीवन सिर्फ पीने का पानी लाने में ही निकल जाता है।
3: मानव मम्मी सही कह रही हैं। शुद्ध जल के लिए हमारे देश में लाखों लोगों को मीलों भटकना पड़ता है।
1: और मानव रही हवा में नमी की बात, तो वो तो सतही जल के सूर्य की गर्मी से बनने वाली भाप है, पानी भाप बनकर हवा में मिलता रहता है।
2: अच्छा तो इसीलिए छतों पर रखे पानी की टंकियों में ढक्कन लगाए जाते हैं ताकि उनका पानी भाप बनकर ना उड़े।
3: मानव इसमें कुछ सच्चाई तो है, पर टंकियों को इसलिए ढक दिया जाता है ताकि पानी में कचरा ना मिले।
2: भैया मम्मी भी तो हवा में नमी बढ़ाती है, मम्मी जब चाय बनाती है तब चाय की पतीली से भी तो भाप उड़ती दिखती है।
1: माँ ही नहीं हम सब हवा में नमी बढ़ाते हैं।
3: हाँ मानव हमारी श्वसन क्रिया यानी जो सांस हम लेते और छोड़ते हैं उससे भी तो हवा में नमी आती है।
2: भैया ठंड के दिनों में मेरे मुंह से भी तो भाप यानी नमी निकलती है।
3: हाँ मानव तू सही कह रहा है।
1: तो मानव समझे कि जल स्रोतों जैसे समुद्र नदियों व झीलों से सूरज की गर्मी द्वारा जल भाप में बदलता है
3: और ये क्रिया वाष्पन कहलाती है, कुछ समझा?
1: ये भाप या नमी हवा की आर्द्रता यानी उमस को बढ़ाती है।
2: विवेक भैया फिर तो समाचार पत्रों रेडियो और टेलीविजन में बेबात ही ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र के जलस्तर बढ़ने का हल्ला मचाया जाता है। यदि इसी प्रकार जल भाप बनकर हवा में मिलता रहेगा तो बजाय समुद्री जल बढ़ने के समुद्र का अधिकतर पानी हवा में नमी के रूप में इकट्ठा होता रहेगा।
3: ऐसा नहीं है मानव, धरती पर पानी एक जल चक्र के माध्यम से समुद्र से हवा में और हवा से पुनः समुद्र में मिलता रहता है।
2: ये तो ऐसा ही हुआ कि पानी को फ्रिज में रखकर बर्फ जमाया और फिर उसी बर्फ को शरबत में डाला तो वो पानी में बदल गया, है ना?
0: हाँ मानव, दुनिया में अनेक घटनाएं नियमित होती हैं, जैसे पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, सूरज का रोज उदय होना, अस्त होना,
2: और जैसे मेरा रोज रोज स्कूल जाना।
0: मानव, तुझे तो एक दिन रविवार की छुट्टी भी मिल जाती है।
3: लेकिन पृथ्वी पर जल चक्र द्वारा निरंतर जल से भाप बनती रहती है।
2: लेकिन भैया, हमें तो कार्य करने के लिए खाना चाहिए होता है, फिर धरती पर जल चक्र को भी तो कहीं से ऊर्जा मिलती है ना?
0: मानव, तेरा काम खाने से कहाँ चलता है, तुझे तो खीर भी चाहिए होती है।
3: और साथ में पूरी भी। मानव, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, सभी को अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जल चक्र को भी सूर्य की ऊर्जा ही चलाती है। सूरज की गर्मी से ही पानी की विशाल मात्रा जल चक्र द्वारा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है।
1: हाँ विवेक भैया, हमारे आसपास जल तीन रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव व गैस।
3: बिल्कुल ठीक सृष्टि, जल का द्रव रूप यानी पानी और ठोस रूप यानी बर्फ और गैस मतलब भाप।
2: भैया, मुझे तो पानी का ठोस रूप यानी बर्फ अच्छा लगता है, गर्मी में राहत देने वाला, ठंडा सा।
0: मानव, जब तुझे सर्दी लगती है तब बर्फ याद नहीं आती?
4: तब मैं हूँ ना अपने बेटे को भाप देने के लिए। मेरा
5: किसे भाप दी जा रही है?
0: किसी को नहीं, अपने मानव के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं यहाँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।
5: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे विवेक बेटा, तू कब आया वरुण के यहाँ से?
3: बस अभी।
5: उनके यहाँ हैंडपंप से पानी निकला या नहीं?
3: निकला है बाबा।
5: गुड।
2: पापा, आज तो छुट्टी की शाम का मजा पार्क में चलकर लिया जाए।
1: हाँ, मेरी भी बाहर घूमने की बहुत इच्छा हो रही है पापा।
5: वेल, तो बच्चों अपनी मम्मी से भी पूछ लो।
0: ये लीजिए चाय। बच्चों, तुम अपने पापा के साथ जाओ, आज घर पर मेरी सहेली पूनम आ रही है, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है।
3: बढ़िया बात है मम्मी, आप अपनी सहेली से बातचीत करिए, मैं और पापा और सृष्टि और मानव पार्क में जाते हैं, 8 बजे तक लौट आएंगे।
5: मैं आप लोग चलो, मैं चाय खत्म करके आता हूँ।
0: मानव का ध्यान रखना सृष्टि।

0: हेलो भाई, आ गया।
1: दीदी उधर देखो, कितने सुंदर गुलाब के फूल लगे हैं ना।
2: वो गुलाब के फूल कई रंगों के हैं, देखो।
3: भाई मुझे तो चाचा नेहरू की तरह लाल रंग का गुलाब पसंद है।
1: पापा, घर पर तो आप गमलों को रोज पानी डालते हैं, फिर वहाँ इतने सुंदर और बड़े फूल क्यों नहीं होते?
4: अब बेटा, पौधों को पानी के साथ पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए ना।
1: पर पापा, आप तो गमलों में खाद भी डालते हो, फिर भी फूल बड़े क्यों नहीं होते?
2: ऐसा इसलिए मानव, क्योंकि हमने इन फूलों की किस्म ही नहीं लगा रखी, समझे? और वैसे भी यहाँ माली है रोज रोज की देखभाल के लिए। पापा तो सिर्फ शनिवार को ही अपने गमले देख पाते हैं।
3: और मानव, यहाँ फूल छूने या तोड़ने पर माली पिटाई भी कर देता है।
1: भैया, क्या यहाँ भी माली रोज पौधों को पानी देते हैं?
2: और क्या मानव, वरना पौधे मर नहीं जाएंगे।
1: पर दीदी, ये सारा पानी तो मिट्टी सोख लेती है, फिर पौधों को पानी कहाँ से मिलता है?
3: अरे मानव, पौधे मिट्टी से ही जड़ों द्वारा पानी चूस लेते हैं और साथ ही पोषक तत्व भी।
1: फिर पौधों से पानी कहाँ जाता है?
4: अरे बेटा, पौधे मिट्टी से पानी लेकर अपनी पत्तियों द्वारा फालतू पानी को नमी के रूप में हवा में छोड़ते हैं। बेटा, जिस तरह आदमी व अन्य जीव सांसों के द्वारा हवा में नमी छोड़ते हैं, उसी प्रकार पौधे भी हवा में नमी छोड़ते हैं।
3: और मानव, इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है।
2: पापा, ऊपर आसमान में देखिए, कितने सारे पक्षी हैं, देखिए।
4: दृष्टि देखो, पक्षी भी शाम होते ही अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगते हैं।
2: देखो
3: बाबा, कहीं चल के बैठ लिया जाए। आइए यहाँ
4: बैठो।
2: पापा, पार्क में कितना अच्छा लगता है ना। ठंडी ठंडी हवा, फूलों की महक व चहचहाते पक्षी।
3: और सुबह सुबह पापा और मैं जब यहाँ घूमने आते हैं, तब भी ऐसा ही नज़ारा होता है।
2: हाँ, तब कभी कभी यहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई दे जाती हैं, है ना पापा?
1: वाह भैया, कल से आप मुझे भी अपने साथ लेकर आ।
2: अरे चल चल, स्कूल जाने के लिए तो समय पर तैयार हो नहीं पाता, सुबह 6 बजे कैसे घूमने आएगा।
4: अगर तू सुबह जल्दी उठ गया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम तुम्हें भी साथ लेकर आएंगे।
1: अच्छा पापा, कल से मैं भी जल्दी उठकर आपके साथ घूमने आऊंगा।
3: मानव, क्या सोच रहा है?
1: भैया, मैं सोच रहा था कि हवा में जल के मौजूद होने पर जैसे गिलास की बाहरी सतह गीली हो जाती है, वैसे हमारा शरीर या अन्य पदार्थ गीले क्यों नहीं होते?
2: मानव, हवा में उपस्थित वाष्प तभी द्रवित होती है जब वो हवा से कम तापमान की किसी वस्तु के संपर्क में आती है। जैसे गिलास में ठंडा पानी डालने पर गिलास की बाहरी परत गीली हो जाती है।
1: अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि जब मैं गिलास नल के पानी से भरता हूँ, तब गिलास की बाहरी परत गीली क्यों नहीं होती? अच्छा भैया, क्या ये वाष्पन हमेशा होता रहता है?
3: हाँ मानव, हमेशा, कभी कम तो कभी ज्यादा।
4: पर कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब वाष्पन बिल्कुल नहीं होता बेटे।
1: वो क्यों?
3: क्योंकि वाष्पन किसी स्थान पर वायु के तापमान पर निर्भर करता है।
1: भैया, हमारी टीचर ने बताया था कि हवा की नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, और किसी भी समय हवा की अधिकतम नमी को सोखने की एक सीमा होती है।
3: अच्छा।
1: हवा की नमी धारण करने की इस अधिकतम क्षमता को हवा में मौजूद नमी की तुलना को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं।
3: क्या बात है मानव, क्या बात है, कमाल है मानव, कमाल, खीर का असर है सब। ऐसे मानव, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। अगर हवा में मौजूद नमी हवा की कुल नमी सोखने की क्षमता के बराबर हो जाए, तब वाष्पन की क्रिया नहीं होती है।
1: अच्छा, जैसे मुझे भरपेट खीर मिल जाए तो फिर और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होगी।
2: वाह मानव, पार्क की खुली हवा से तेरा दिमाग भी खुल गया लगता है।
3: भाई कभी कभी ही तो मानव समझदारी की बात करता है।
1: अच्छा भैया, जल चक्र में वाष्पन के बाद कौन सी क्रिया होती है?
2: वाष्पन के बाद संघनन और फिर द्रवीकरण, है ना भैया?
4: लगता है सृष्टि ने खीर के साथ बादाम ज्यादा खाए हैं।
1: मेरे हिस्से के भी खा लिए लगता है।
2: क्या पापा, आप भी मेरा मजाक उड़ाते रहते हो।
1: पापा, दीदी रोज जो इतना पढ़ती है इसीलिए इतना कुछ जानती है।
3: और तुझे हम रोज पढ़ने को कहते हैं और तू फिर भी नहीं पढ़ता।
1: हाँ, तभी तो ये मानव ना समझ है क्या दीदी।
4: अच्छा जो भी हो, ये सही है कि भाप में जल के अणु

0: गैसी अवस्था में होते हैं। ये भाप ऊपर उठती जाती है और फिर धीरे धीरे इसमें उपस्थित जल के अणु आपस में टकराते हैं, जिससे इनकी गुप्त ऊर्जा कम होती जाती है और तब जल वाष्प के नन्हे नन्हे अणु आपस में जुड़ते जाते हैं।
1: मतलब संघनन की क्रिया आरंभ हो जाती है।
2: हाँ सृष्टि, लेकिन संघनन की क्रिया तब शुरू होती है जब हवा नमी से लबालब भर जाती है।
1: भैया, क्या संघनन की क्रिया धूल के कणों पर भी निर्भर करती है?
2: हाँ, धूल के कण अधिक होने पर संघनन की क्रिया तेज हो जाती है।
3: भैया, जैसे खाने की महक मेरी भूख बढ़ा देती है, ऐसे ही ना?
2: हाँ मानव, अब तो तुझे मेरी सारी बात अच्छी तरह समझ आने लगी
3: है। नहीं भैया, आपकी बात नहीं, मानव खाने की बात जल्दी समझता है। भैया, संघनन की क्रिया भी क्या मेरी भूख की तरह लगातार चलती रहती है?
2: मानव, तू और तेरी भूख। नहीं मानव, ऐसा नहीं। अच्छा एक बात बता, जब तुझे तेरी आवश्यकता अनुसार खीर मिल जाएगी तब तू और कुछ खाएगा क्या? और अगर खाएगा तो क्या होगा?
3: भैया, ज्यादा खाने से तो उल्टी हो जाएगी।
2: हाँ मानव, इसी प्रकार एक निश्चित ताप पर, जिसे ड्यू पॉइंट यानी ओसांग कहते हैं, इस ताप पर वर्षा की बूंदें बनना शुरू हो जाती हैं।
1: अच्छा भैया, तो आप जल चक्र की तीसरी अवस्था यानी द्रवीकरण की बात कर रहे हो, है ना?
2: सृष्टि, संघनन के द्वारा जल के अणुओं के आकार में वृद्धि होती जाती है। एक निश्चित आकार के बाद जल धरती पर वापस वर्षा के अनेक रूपों, जैसे वर्षा, ओले, हिमपात के रूप में बरसता है और ये क्रिया द्रवीकरण कहलाती है।
1: भैया, मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रतिवर्ष जल चक्र द्वारा लगभग 40,000 घन किलोमीटर जल धरती से वाष्पित हो संघनन व द्रवीकरण के बाद धरती पर वापस गिरता है।
2: इस प्रकार वाष्पन, संघनन और द्रवीकरण द्वारा जल चक्र से जल की विशाल मात्रा धरती और हवा के मध्य चक्रित होती रहती है।
3: लेकिन भैया, जल में विलय लवणों का क्या होता है?
2: मानव, जल में विलय लवण वाष्पन की क्रिया में ज्यों के त्यों रहते हैं।
1: अच्छा, तो समुद्र में इसीलिए लवणता बढ़ती जाती है।
3: तो क्या धरती पर सभी जगह जल की वाष्प उपस्थित होती है?
0: मानव बेटा, अत्यंत सूखे रेगिस्तानी इलाकों को छोड़कर पृथ्वी पर हवा में जल वाष्प की मात्रा 0 से लगभग 4% तक होती है।
2: धरती के कुल शुद्ध जल का एक भाग का भी हजारवां भाग वातावरण में जल चक्र द्वारा वाष्प के रूप में मौजूद रहता है।
0: बच्चों, तुम्हारी बातें पूरी हो गई हो तो अब घर चलें।
3: हाँ पापा, अंधेरा भी हो गया है।
0: मुझे डर भी लग रहा है।
1: मानव को खीर खाने की भी जल्दी हो रही होगी, है ना मानव?
3: दीदी, अब तुमने खीर याद दिला ही दी है तो अब घर तो चलना ही पड़ेगा।
2: चलो भाई, मुझे पढ़ाई भी करनी है।
1: हाँ, अब तो सूर्य भी अस्त होने को है।
2: अरे सृष्टि, से याद आया, धरती और हवा के बीच का ऊष्मा वितरण सूरज की ऊर्जा के सहयोग से ही संभव हो पाता है, जिसमें जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
0: हाँ बेटा, सूर्य की गर्मी से पृथ्वी पर जल चक्र नियमित चलता रहता है
3: और पार्क में भी गुलाब के फूल खिलते रहते हैं।
0: हाँ, सूर्य ऊर्जा से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं।
3: लेकिन सूरज गर्मी भी बरसाता है।
1: मानव, धरती पर जीवन के लिए गर्मी भी तो आवश्यक है।
0: अरे चलो भाई, चलो घर चलो, शाम के ठंडे मौसम में गर्मी की बात अच्छी नहीं लगती।
3: लो, अब तो घर भी आ गया है। शायद नल नहीं आया, मम्मी बाहर ही खड़ी है।
0: अरे क्यों वसुधा, नल में पानी नहीं आया क्या?
4: हाँ जी, कोई कह रहा था कि चौराहे की टंकी में पानी नहीं भरा है, इसलिए नल नहीं आएगा।
3: मम्मी पता है, आज हम पार्क में बहुत घूमे और अब तो मुझे भूख भी लग गई है।
2: मम्मी, अपनी पानी की टंकी तो भरी है ना?
4: हाँ हाँ, क्यों?
2: बस नहाने की इच्छा हो रही थी।
4: तो नहा लेना बेटा, टंकी में इतना पानी तो है ही।
3: मम्मी, आज मैंने वातावरण में पानी की उपस्थिति के बारे में बहुत सारी बातें जानी है।
1: हाँ मम्मी, आज विवेक भैया ने मानव को जल चक्र के बारे में बहुत कुछ बताया है।
4: तो तुमने आज पार्क में घूमने के साथ साथ अच्छी बातें भी सुनी।
3: हाँ मम्मी, और अब मैं खीर खाने की तैयारी करने जा रहा हूँ, मगर पहले नहा लूँ। कहाँ रखा है मेरा तौलिया?
4: अरे बाथरूम में, और कहाँ? अच्छा, जा अच्छा, रहा अच्छा, जा, जा।
2: लो मम्मी, मैं तो नहा लिया, अब जिसे नहाना हो नहा ले।
3: मम्मी मैं भी आता हूँ।
4: अरे कहाँ जा रहे हो, अभी तो आए हो तुम बाथरूम से, मैंने तुम्हारी खीर लगा दी है।
3: मम्मी मैं नल टाइट बंद करने जा रहा हूँ, अब मैंने जल के महत्व को जान लिया है।
2: चलो भाई, अब अगर मानव जल संचय करना सीख गया तो फिर सारी समस्याएं दूर।
4: मानव खीर पर टूट पड़ा है इधर, जल्दी चलो वरना खीर संचय नहीं हो पाएगा।
2: चलो भाई चलो, जल्दी चलो।

धरती मेरी धरती। अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 21वीं कड़ी सुन रहे थे, हवा में जल।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: अभियान।
1: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित,
2: टीबी रोगी के साथ रहते हों,
1: मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाए। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाए।
3: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाए।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
1: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
2: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना फैलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
3: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
2: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
3: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
2: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
3: ये बात है तो हम बच्चे भी मच्छरों से भिशुम भिशुम लड़ने के लिए तैयार है।
2: क्या कहा तुमने?
3: Kids want to know, Miss मच्छर, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
2: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
3: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: दोस्तों, बन जाओ टीम तारा। जहाँ भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
1: टीम तारा है भैया।
2: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
0: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
1: गुड बाय।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी हैं, इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
3: डियर किरण, अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एक खत भी लिखना शुरू किया है, पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ।

तू चक ता सही इनाम तेरा ही लेंदा रहेंदा तू सुन ता सही।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
4: शारदा। मैडम यू कैन बी वेरी फंटा।
5: केगो डाइट का नाम सुना है? आज से ये सब बंद और वो शुरू।
6: अरे बीबी जैसी पहले थी वैसी फिट हो जाओ। इंजर पिंजर ठीक करो फिर से हिट हो जाओ।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा
3: 90.8 FM। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: रमनोज काय मुँह लटकाए बैठो, का बात होगी?
2: अब कहो बताऊं भैया, दो दो बेर कोविड को टीका लगवायो, हम सो कही यासु जो प्रमाण पत्र मिलेगो ना, आगे बड़ा काम आएगो।
1: तो का हुआ, मिलो ना? तो
2: मिलो तो है, पर याय देख देख के अपना माथा ठोक रो हूँ।
1: क्यों, तेरे नाम में कोई गलती है? पिताजी का नाम कुछ और गेर दियो
2: ना। वे दोनों तो ठीक है, फोटो भी ठीक है।
1: तो का बात है
2: भैया, जब मोबाइल दुनिया हाथ में ले घूमो ना, वाकू नंबर ही गलत गेर दियो।
1: ए तो यहाँ इतने परेशान होने का बात है, छोटी सी गलती है, हो जावे कभी कदार इस गलती।
2: तो अभी वो ठीक ना हो?
1: बिल्कुल होगी। यूं मान लो, अगर या के जैसी दूसरी गलती है, जैसे तुमने दूसरा टीका लगवा लिया हो पर वो प्रमाण पत्र में ना लिखा गया हो, विदेश यात्रा को प्रमाण पत्र पे पासपोर्ट का विवरण ना लिखा गया हो, या कोविन पोर्टल पे लॉग इन करने को कई दूसरे नंबर का उपयोग करा गया हो, ये सारी गलती भी ठीक हो जावे। लेकिन एक बात याद रहे, यू बस एक ही बार ठीक हो गए।
2: अरे एक बार तो ठीक हो जाए, पर याकू करनी क्या होगी?
1: कुछ ज्यादा ना, बहुत आसान है। कंप्यूटर इंटरनेट की जाए थोड़ी सी भी जानकारी है ना, वो आदमी अपने आप या घर बैठे ठीक कर देगा। सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर पे जाके cowin.gov.in टाइप करो। वहाँ के बाद कोविन के होम पेज ऊपर दाईं ओर कोने में दिए हुए रजिस्टर साइन अप पे क्लिक करो। फिर जहाँ मोबाइल नंबर को उपयोग तुमने टीकाकरण के टाइम पे करो, वह नंबर डालो और 6 अंकन को एक ओटीपी आवे, वह वेरीफाई करके तुम्हारी प्रोफाइल खुल जाएगी। वहाँ पे तुम्हारे टीकाकरण की स्थिति दिखाई दे जावे। प्रमाण पत्र में सुधार करने को ऊपर दाईं ओर दिए हुए रेज द इशू पे क्लिक कर दो और वह प्रक्रिया पूरा कर लो। बस होगा तुम्हारा काम, चुटकी बजा चाहिए। या के अलावा अगर तुम्हें कोविड के टीकाकरण प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि है, तो आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से भी संपर्क साध सको।
2: रही ना बात, इब करूं प्रमाण पत्र में सुधार।
1: यू जानकारी यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8

0: जंगल है, आधी रात है।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं, इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है, जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है, उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो साधन 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।
6: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे। एक एरोप्लेन में कायलपट्टन के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुरम। हे बाबू, हाँ बोल दें तेलुगु।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब होटल मॉल स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा
1: 90.8 FM। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है?
6: अरे मम्मी सरकारी नौकरी लग गई।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: जब टीचर हमारी क्लास में अटेंडेंस लेते हैं और अगर कोई बच्चा मिसिंग होता है तो जब हम उसके बारे में पता करते हैं और अगर हमें पता चलता है कि उस बच्चे को बुखार है तो फिर हम तुरंत आशा से संपर्क करते हैं जो उसी गांव की होती हैं। वो आती हैं और हम उन्हें उन बच्चों के बारे में बताते हैं कि आप जाकर देखिए। फिर वो उनके घर जाती हैं, उनकी कंडीशन देखती हैं और फिर जैसा होता है वैसा वो उनको रेफर करती हैं। बच्चों को निबंध के माध्यम से, भाषण शैली के माध्यम से जागरूक करते हैं और बच्चों को पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से भी जागरूक करते हैं और बच्चे उसे अपने घर जाकर के अपने अभिभावकों को बताते हैं।
1: मेरी बेटी स्कूल से जो सब सीख के आती है वो सब हम घर पे पालन करते हैं, जैसे कि हाथ धोना, गड्ढे में पानी इकट्ठा न रहने देना, मच्छरदानी लगाकर सोते हैं क्योंकि हमें मच्छर काट लेगा तो बुखार हो जाएगा। और बच्चे जो स्कूल से सीख के आते हैं वो इसे सब बच्चे अपने घर पे अच्छे से पालन करें।

0: अभियान।
1: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा। सुनो शारदा।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: लड़की शहर में नहीं हो, सुंदर हो, क्यूट लग रही हो, वैसे सिंगल हूँ दिल का भी अच्छा, क्या हस्बैंड ढूंढ रही हो,
1: कुछ भी कराना हमसे कहना, यहाँ के डॉन है।

0: हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
3: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: 5 साल तक नियमित रूप से अपने शिशु का वजन कराएं।
2: अगर उम्र है ज्यादा और वजन है कम
1: तो नहीं है आपके आहार में दम,
2: न घेरे आपके बच्चे को कोई बीमारी।
1: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से पाएं अपने बच्चे की वृद्धि की जानकारी।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे डब्बा ले आ,

0: What? बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
1: आई पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
0: वो
1: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
2: क्या हो बेटिया?
3: डॉक्टर साहब
4: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपके ही देन है।
5: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
1: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
3: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
4: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
7: हाय मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी है।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़े, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.
7: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।